सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरनी शोभा तनमंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्र

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटेता पापुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हारना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तर तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै तै किसे भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नाह सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद तेब कहा कुचीन। जब अपने आप उतार तो सगन अब सगन कहा विचार। जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिये चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाला शेदा भेद।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ता के कर्म सब ते ऊच ता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ता की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस भ्रम्यो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए साध संग मेरे।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम क्रो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेश, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हाँ करत बिहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनके उपाए। आद ब्याद उपाद रस।

को खाट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भक्त सोहे गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह स्मृत कथ अनेक उत्तम उच्चो पार ब्रह्म गुणअंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत।

मिले तो टाहिर सासंग लिव लाए खाड़ खजाना गुण धारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक सिसों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय दुख हरे पव जल तरै मन चंदया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण। सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारण हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइयै तजियै अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरुदर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसे ज्ञान। हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिया नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरसुर्ग अवतार। पौड़ी नौमी नवे छदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारतरे रमै बकै साध निंद करना सुनही हर जस बिंद। हिरै पर दर्ब उदर कैताई अगना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह दस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल।

मंत्र बताय हर सिखाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दित्ता जोड़ महला तीजा माया तारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनई बहुरोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस पावै सो करे कराया नानक वज

अपनी कृपा करे हर मेरा नानक लय बहोड़ पौड़ी। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाना मन्या तिन चढ़ी चवगण मन्ने। एह चाल निराली गुरमुखी गुर दिखिया सुन मन पिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गो प्याया अपना।

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां।

जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्टेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जिया वनहारा रहाओ। आ देही परमल मैं कंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज पर है मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले कहो चूंगै नित भेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पद ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव सब

सूर चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेद कतेब ते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारै खसमता राखै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जस सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो, तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहूं कहल। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना मा

मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए, अपन कया ना लेही। सर जियो काटे निर्जियो पूजे, अंतकाल कौ भारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बौना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्त्र रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पत प्रगासा, सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निश्चल शिव कर बासा। तिन बिन बाणै तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दैद सिर बूंडी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। ओन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्र खट भेदे, सुरत सुन अनुरागी, आवै ना जाए मरै ना जीवै, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अगल पई अवरै, ना तर था बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मान्या, अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिया, ऐसा कोई बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तैं उत्पत पर लो नाही, जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तुल नहीं चढ़ै जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दो बैल बिसाहे, पवन पूंजी परगासेओ, तृष्णा गूण परी कट पीतर, इन बिद टांड बिसाहेओ। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ। काम क्रोध द्वय पय जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरै, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सनोरे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का, चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंचपदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना, अंधा लोक न जाने, मूर्ख ए आना। कहो डडिया बांधै धन खड़ी, पाहू कर आए मुकलाऊ आए रहाओ। ओहो जो ओहो जे दिसै खूड़ी, कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्ज सवारे, तां सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी, पई निराशी।

एक है शब्दी, एक है सिद्ध पाई, हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ। जह ते उपजी तही समानी, एह विद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै, इन विद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है, कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद, जह कछ आहा तहां किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही परजान ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगर पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिए पाचन सिर अढ़ाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतनी निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहार बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यों कासी उपदेश होए मान समर्ति बार।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजमो अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहि बिचारे ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द ना धारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगा ने काष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बवरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवरा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बवरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंब का मन बौरा रे त्यो पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर।

तस कर निर्णय आवै। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावै। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिय रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन, कही ना सच रहयो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं, फिर काल हयो। या तन जोबने अरसुत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर, चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सतगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिनस जाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावै ता हुक्म नावै, इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछी है, डरिय ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने न की जय आस। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना

कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार, सेवक सो सेवा भले जिह कट बसे मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तै सोयो संसार। राम रस पिया रे जिह रस बिसर गए रस और रहाओ, और मोए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए। जो उपजे सो बिनस है दुख कर रोवे बलाए। जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा। उरना पीजे पगना खिसै हर दर्शन की आसा। उडहो ना कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारणो हर की पद करी जय, एक आधार नाम नारायणो रसना राम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कंत तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊं रे ओवा का स्वरूप देख मोही गुआरनो। मोको छोड़ ना आओ ना जाऊ रे, तोहे चरण मन लागो सारंग तार। सो मिले जो बड़ भागो रहाओ, बिंद्रा बानो मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे। जा का ठाकर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे। गौड़ी बारहवीं गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बिपल बस्तर केते है पहरे क्या बन मध्य बासा। कहां पया नर देव

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारहवीं मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़े मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा कै माई ना बापोरे। गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन कौ खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ, निंदा होए

पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है एक है, देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौकर

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, सेवसन काद जास गुन गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना, कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। रा गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जहां बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसलख है ना कोई, अल लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कत ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निवसै सोई, काट फूटे काट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कतावा, नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो, छाड़ के ना आसा, अरे

मम्मा मूल गया मन मान मरमी हुए सो मन को जान मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे मम्मा मन स्यों काज है मन सादे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कह कबीरा मनसा मिलिया ना कोए एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो एहो मन ले जाओ उन मन रहे तो तीन लोक की बात कह यैया जाओ जान तो दुर्मत हानो कर बस काया गाओ रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया एहरा छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मल्लावे अंत ना जाए परम सच पावे आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार बल बल जे बिसन तना जस गावे विसन मिले सब ही सच

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर पवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा, ससा सो सहसे सवार सोई सही संदे निवार अल्प सुख शाड़।

अभी होए तब है मनमाना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बो सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह।

जैसी बध होई कह कबीर जानेगा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की श्लोक। पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पेओ आपे करता आपे देओ। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म में सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

दसवीं दैद सहय आनंद छूटे परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर नायावै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा। बारस बारह उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ। तेरस तेरा अगुंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदह से चौदह लोक मजार रोम रोम में बसे मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज महवाए। सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मत वारो पीवनहार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत घर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसहै राए। बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास। गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुदा करै बृहस्पत बिख्या दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे। सोकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै। सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै। थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कट में जोए। बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट में दूजी आन तौ लो महल न लाभे जान। रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै परम फास, प्रेम

अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सो दर तेरा कहा सो कर कहा जित मैं सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावण हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जो जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साहेब।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावै मंत्र पित ना आवै। जो जन्मे से रोग व्यापे, हम मैं माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राख है अमृत चाख है, सतगुर सेव अमृत शब्द भाख है। साचै शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

बुरा पला कहो किसनो कहिए, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम निम पाए लगो गुरे अपने, आत्म राम ने हारिया, करत विचार हृदय हर रविया, हृदय देख विचारिया, बोलो राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे ज्ञान होए उजियारा, रहाओ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हो मैं भरम ना जाई, सतगुर मिले ता मैं टूटे, ता को लिखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिया प्रीतम, सुख सागर ओर तारे, भगत वछल जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यों जूझ मरे प्रपाए, मनसा मने समाए, नानक कृपा करे जग जीवन, सहज पाए लिवलाए। आसा महला पहला, किसको कहे सुनावे किसको, किस समझावे समझ रहे, किसे पढ़ावे पढ़ गुण बूझे, सतगुर शब्द संतोख रहे। ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा, रहाओ अनंत तरंग भगत हर रंगा, अंधन सूचे हर गुण संगा, मिथ्या जन्म

प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टायो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंध, कीन खराब होवे नित कंध, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पौ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवा ले जिया, जय पावे तै राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जा जाचो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ, बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लिलाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने साबास, सच्चे तख्त

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग न पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझ न होए, साचा रव रहे या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्से जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यो मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सामीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना। दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निद पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शन हार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अटकी चै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे, मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सब जागै हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सब जागै हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हम मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवै पतार तव नानक कंत मन पावै छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी एआ।

साहुरडे तन सच पछाणिया सहज सुभाए अपना पिर जाणिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन पावे कहत नानक पै भाव का करे सिंगार सधी से जरवे पतार आसा महला पहला ना किसका पूत ना किसकी माई झूठे मोहे भरम भुलाई मेरे साहेब हाँ कीता तेरा

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के ते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो वंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया।

लख मड़िया कर एक ठे एक रत्ती ले पाहे रहाओ। पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार, एथे उथे आगे पाछे एहो मेरा आधार। गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ, सच्चा नावन तां थी है जा एनस लागे पाओ। एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है। आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए। जोगी जदी जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पे, तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता, कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़ वेलायत देश गए, पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे। सात सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द बंद दर तेरा, नाम रते दरवेश पे।

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवां महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रह जैसे भवै उदासे। मन मेरा दयाल से तीथिर न रह, लोभी कपटी पापी पाखंडी, माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पैरोंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोंगी सिंगारो। पंच सखी हम एक पता।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत धारी खिमा सिंगार।

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सो है, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यों चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लिवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, कैमद शूशे पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करे क्या, सिफती रता सद बैरागी, जुवे जन्म न हारे, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धारे, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस ना होई रहाओ, सकता सीहो मारे पैवग, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाने, मर मर जीवै ताक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगमे अपारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कहो गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सां शरीर, गुरमुख ता कहो लगै ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख सा

पाए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर दूजा महला चौथा किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई हमारा तड़ा हर रया समाई हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिन स्यो तड़े करे से जाहे झूठ तड़े कर पछोताहे थिर ना रहे मन खोट कमाहे हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है एह सब तड़े माया मोह पसारी माया कौलू जय गावारी जन्म मरे जुए बाजी हारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अपमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सतसंग में लाए हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै जैसा बीजै तैसा खावै जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया गुरबाणी हर लख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना एको रव रहया कट अंतर मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ मैं मंतन प्रेम महा बैराग सतगुर पुरख पाया वड भाग दूजे पाए पवै बिख माया भागहीन नहीं सतगुर पाया अमृत हर रस हर आप पियाया गुरपूरे नानक हर पाया आसा महला चौथा मेरा मन तन प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुखसार नाम जपो मेरे साजन सहना।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निचल थाए जब तो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े निश्चित।

हर हर राए। नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरा संग सहाए। आसा महला पंजवा अरड़ावै बिललावै निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लै सधावै अनहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै सो नानक आख सुनावै। भगत जना को उसका आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहने स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्ज आप सवारिया। पूर समगरी पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ। नाम निधान।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कू मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहिथ तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक सरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापै चिंद हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब हो चेरे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर रस साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुरमत अपनी तारी होए निमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावे तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दा दासरी ता पावे सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावे नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत पज केवल।

सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। आसा महला पंजवा, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत, विसर नाही तू सास बिरासा रहाओ। राख राख सरन प्रभ अपनी, अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या, ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागे, चरण कमल शरण आए। संत प्रसाद पय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदानित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पया समटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओह ना बाला बूढ़ा भाई। रहाओ नानक दास सा शरणाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, साध संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सतगुर भेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा, जाका हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे, सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे। जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपूरै लैखन मैं तारे रहाओ। सब की रेन होए रह मनुआ, सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकर, दान दे सब जी सुमारे। एको एक आप एक एक, एक है सगला पासारे, जप जप होए सगल साज जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे, तुमरी कृपा ते गुण गावै नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझे मजार। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देहो सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगमे अपार रहाओ। जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरेता नाम आधार, आनंद करे सास सास सुमारे, ना पोहे अगनार। पर तन पर दारा पर निंदा, इनसे

का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने। संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलिया नूप हर संत मंत, को लागे साधु। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वड़भागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना। सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा। अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावै। मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावै रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता। जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया। वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई। अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई। जमपुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया। पहुंचना साके काहूं बाते, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा। तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमे एवे भाणा। जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक

बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहा काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखै, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुक्ते सगल सुनावै।

कर संग साधु चरण पुखार है, संत तूर तन लावै, मंतन अर्प तरे गुरे आगै, सत पदार्थ पावै, जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागै, ऐसी निरत नरक निवारै, नानक गुरमुख जागै। आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठाई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे, घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नौके हर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ बाई थूनिया छपरा।

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइया, एहो अस्थान गुरु ते पाई है। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बाहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझे सोई परवान, सास सब जा का निशान। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, पंडित नानक मेरे मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोल, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

प्रभ की प्रीत पय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सद शोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, भूपत होय कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परत पा वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इनस्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुरप्रसाद में खोटी डीठी, अगर उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार, संत रहत सुनो मेरे भाई, ओवा की महिमा कथन ना जाई, रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जा कह एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग, गुरप्रसाद ओ आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकी पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै शरणाए, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदके सुनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी,
ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਤਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ ਹਮਾਰੈ

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवां पंच पदा, जेह पेंड लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवां दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवां महला पंजवां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवां, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

की तप्त हरि पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहा उहा कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह बहु ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सह सुमाही। जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साइय साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपो पद पाई है सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख। कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनाशे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी सब

मानो बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटे महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां साई अलख अपार, पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौण। जैसे पास हरे आओ तैसा संसार सब, नानक बंधन काट मिलावो आप प्रभ। आसा महला पंजवा, हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर, झूठा लाहे गुमान मंत निरपतर। आठ पहर सा लाहे सृजनहार, तू जीवा तेरी दात कृपा करो मूं रहाओ। सोई कम कमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू देहला। जो ना टहंदो मूल सो कर रास कर, हिको चित वसाए कदे ना जाए मर। तिन्ना प्यारा राम जो प्रभ पाणिया, गुर प्रसाद अकथ नानक बखाणिया। आसा महला पंजवा, जिन्ना ना विसरै नाम से कनेहा, भेद ना जानो मूल साई जेहा। मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से। जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए। दिन सरैण आराध समाले साहसा, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवा, पूर रया सर्व ठाए, हमारा खसम सोए। एक साहेब सर छत दूजा नाहे कोए, ज्यो पावे त्यो राख राखण हारिया। तुझ बिन अवर ना कोए, नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रभ आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे ना झूरिया, नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवा, क्या सोवै नाम विसार, गाफल गह लिया। कीती इत दरियाए वंजन महिंदिया, बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है। आठ पहर गुण गाए साधु संगिया रहाओ। भोगे भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मलना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महा बिखम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा, कोई न किसी ही संग काहे गरबी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे रहाओ। राज माल जंजाल काज ना कितै गनो, हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो। जेते माया रंग तेत पछावया, सुख का नाम निदान गुरमुख गावया। सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे, आस भरोसा खसम का नानक के जी अरे। आसा महला पंजवा, जिस मृत दुख जाए सह सुख पाई है। रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याई है। नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए, सर्व रहया परपूर सच्चा सच सोए रहाओ।
अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग तिसे अराध मना विनाशय सगल रोग। राखन हारे अपार राख अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए सुख सहज आनंद कणा नानक जन तूरा कार्ज सगले सिद्ध पए पेटिया गुरपुरा आसा महला पंजवां। गोविंद गुणी निदान गुरमुख जानी है होए कृपाल दयाल हर रंग माणी है आवो संत मिला हर कथा कहानियां अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानियां रहाओ। जप जप जीवा नाम होवे अनद कणा मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना। चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया तन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवां। आवहो मीत एकत्र होए रस कस सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है मिल पापा मुंच है। तत विचारो संत जनो ताते बिघन ना लागे खीन पए सब तस्करा गुरमुख जन जागे रहाओ। बुद्ध गरीबी खर्च लै हो हम मैं बिख जा रो साचा हट पूरा।

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वडियाई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा।

अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे वजो नानक मिला एक नाम रिद जप जप जीवे आसा महला पंजवा जा प्रभु की हौ चेरली सो सब ते उचा सब की ताका कांडिया थोरा यार मुचा जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया नाम जसै कै उजली तसदासी गनिया रहाओ वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ा।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे।

पंजवा ठाकर चरण सुभावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेवक माया गुण रस रस गावे एक आसा दर्श प्यासा या न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते अवरदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरणी आईए सर फल पाईए सगले दुख जाही जियन को दाता पुरख विदाता नानक कटकट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवै सर फल पावै सोजन सुखिया हुआ राज कहावै हौ कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ कहो नानक जे सतगुर भेटिया सोजन ने चलथिया आसा महला पंजवा कर चौ दवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओहो निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ जो प्रभ पावै जन्म ना आवै हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै प्रभ संग मिली जय हो मन दी जय नानक नाम मिले अपनी दया करहो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध सरण प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिकार माया माद सोयो सूई बूझ ना आवै पगर केस जम उठारियो तद ही कर जावै लोभ बिखिया बिखै लागे हिर वित चित दुखाही खिन भंगना कै मान माते असर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारै सुनै नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखै ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान तज सियानप शरण नानक आया।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अबरातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निधान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तो हो।

गुण गोविंद गावो, आन दिनो प्रभ त्यावो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवा। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल री दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु, खिनहु उठतायो, खिनहु रस भोगन खिनहु, खिनहु तजायो। खिनहु जोग ता बहु पूजा, खिनहु परमायो, खिनहु कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा, कर सतारवा, आसावरी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरण पै री सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगी री सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तौ मिलिय गुर कृपान मेरे मना। रहाओ टूटे अन प्राण हां, रहो सर्व थान हां, लयो जम भयान हां, पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान, लैनो जिसम थान हां, पै पावक पार प्राण हां, निज कर तिसै थान हां, हर रस रसै मान हां, लाथी तिस पुखान हां, नानक सह समायो रे मना। आसावरी महला पंजवा। हर हर हर गुनी हां, जपिय सह तुनी हां, साधु रसन पनी हां, छूटन बिद सुनी हां, पाइय वड पुनी मेरे मना। रहाओ खोजै जन मुनि हां, सर्व का प्रभ धनी हां, दुलभ कल दुनी हां, दुख बिनासनी हां, प्रपूर्ण आसनी मेरे मना। मन सो सेविय हां, अलख अपेविय हां, ता स्यों प्रीत कर हां, बिनस ना जाए मर हां, गुरते जाने हां, नानक मन मान्या मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। एका ओट गहो हां, गुर का शब्द कहो हां, आग्या सत सहो हां, मने निदान लहो हां, सुख समाइये मेरे मना। रहाओ जीवत जो मरे हां, दुत्तर सो तरे हां, सब की रेन होए हां, निरपो कहो सोए हां, मिटे अंदेसिया हां, संत उपदेसिया मेरे मना। जिस जन नाम सुख हां, तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रपाया मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। मिल हर जस गाइये हां, परम पद पाइये हां, वा रस जो बिदे हां, ताको सगर सिद्धे हां, अन दिन जागया हां, नानक वट भागया मेरे मना। रहाओ संत भगत होइए हां, दुरमत खोइए हां, दस रेन होए हां, व्यापै दुख ना कोए हां, भगता शरण पर हां, जन्म ना कदे मर हां, अस्त्र से भय हां, हर हर जिन जप लय मेरे मना। साजन मीत तू हां, नाम दृढ़ाए मूह हां, तिस बिन नाहे कोए हां, मने अराध सोए हां, निमख ना विसरै हां, तिस बिन क्यों सरै हां, गुर को कुर्बान जाओ हां, नानक जपे नाओ मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। कारण करन तू हां, अवर ना सुजै मूह हां, करै सो होइए हां, सह सुख सोइए हां,
तीर्ज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ। साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिया हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोय हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोय हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सबके सब के सब तिस सुझे हां पतत उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यों रच रहे हां सब कौ तज गए हां सुपना ज्यों पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्म मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसै कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन से मन की लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कह हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कार्थ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अवघट सरवरन आवै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाद लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरमर मैलन धोवै जै स्यो राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव सीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मोरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावा देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योतिष पावे सोफन होए सुन पारथर नानक कह विचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूझे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साच धनी जग आए बिनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमति एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सतगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुरसब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत रख है ठाक रहाए सिख संगत कर्म मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए
रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो ने कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे सच नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला तिर भवन सूजै आप गवावै बाणी बूजै सच समावै शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मान्या ऐसा सुरत वखान कथनी बदनी पड़ पड़ पार लेखा संखा लेखा पार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरना हुक्म पछाण रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल बंदा छूटे नाम समाल गुर सुख दाता अवर ना पाल हालत पालत निभी तुद नाल शब्द मरै ता एक लिवलाए अचर चरै ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन ना मसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी थापो थाप सर्व निरंतर आपे आप किसे ना पूछे पूछे बख्से आप तू पुर सागर मानक हीर तू निर्मल सचगुणी गहीर

आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर पेटे सब फिरे हंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवे बूझे सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती तार पाए मिले पावे पैकार नानक नीच कह विचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिलर होवे हमें जाए शब्द मल धोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन पूजे सगली पत खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए सो रोवे जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवन मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हम बलिहारी सदगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर जोत बिन नामे सूतक जगशोत दुरमत बिन सै क्या कह रोत जन मुवे बिन पग सरोत मुवे कहो सच रोवै मीत त्रैगुण रोवै नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सोचीत तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन भय भक्ति जन बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे पी आपो पाए थापो थाप सृष्टि उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिल नहीं प्रात सूतक अगन पखे जा खाए सूतक जल थल सभी खाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुर प्रसादी हर रस पी जय राग आसा महला पहला आप विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुर माने मनते मन तीरा ऐसा सहो सराफी करे साची नजर एक लिव तरे रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साजरता पैकार सिफत सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए गुरते वाट महल कर पाए कंचन काया जोता नूप त्रिपवन देवा सगल स्वरूप मैं सोतन पल्लै साचा खूट पंच तीन नव चार समावे तारण गगन कल तार रहावे बाहर जा तो उल्ट परावे मूर्ख होए न आखी सूजे जेवा रस नहीं कया बूजे बेका माता जग सो लूजे उत्तम संगति उत्तम होवे गुण कौता वै अवगुण धोवे बिन गुर सेवे सहज ना होवे हीरा नाम जिवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परखै नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख मैली मैल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भक्ति विचारी गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ अहनिस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुकुम पछान साचा हरख नाही ते सोग अमृत ज्ञान मारस भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सोई टाहे ओ सारा हुक्म समावे हुक्मे वरतै जोत इस पावे गुर बिन पूरा कोई ना पावे बालक बिरदना सुरत प्राण पर जोगन बूढ़ा अभमान बिन नामे क्या लैस निदान जिसका अंतन सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे सेवट भागे नानक गुर की चरणी लागे आसा महला पहला गावे गीते चीता नीते राग सुनाए कहावे बीते बिन्ना मैं मन झूठा नीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोइत पावो से हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोग अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाण
निरंकार मैं आकार समावे, अगल कला साई टकावे, सो नर गर्भ जो न आवे, जहां नाम मिले तै जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नामे राता हर गुण गाओ, गुर सेवा ते आप शाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता, अंदर बाणी ना मेरा ता, मेरा प्रभ लाए ता को लागे, हो मैं मारे सब दे जागे, एथे उथे सदा सुख आगे, मन चंचल बिद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाणे, गुरमुख निर्मल नाम वखाणे, हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास, किल विख दो काटे हर नाम परगास, कर बीचार आचार पराता, सतगुर बचनी एको जाता, नानक राम नाम अनुराता, आसा महला पहला, मन मैंगल सक देवाना, बन खंड माया मुहे हैराना, ए त्युत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लै कर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमराओ राम नाम यत निर्मल, अवर त्यागो हमें कौरा रहाओ, एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जमका दुख सहसी, आपे बक्से सदगुर मिलै, काल कंटक मारे सच पेलै, एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा, एहो मन पैता ते जन्मा, साक्त लोभी एहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभवन सोजी होई, एहो मन जोगी भोगी तपतापै, गुरमुख चीने हर प्रभ आपै, मन बैरागी हो मैं त्यागी, कटकट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली हर पत राखै, एहो मन राजा सूर संग्राम, एहो मन निरपो गुरमुख नाम, मारे पंच अपने वस किए, हो मैं ग्रास एक तथाए किए, गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे, गुरमुख एहो मन भक्ति जागे, अनहद सुन मान्या शब्द विचारी, आत्म चीन पै निरंकारी, एहो मन निर्मल दर कर सोई, गुरमुख भगत पाओ तन होई, अहनिस हरजस गुर प्रसाद, कड़ कड़ सो प्रभ आज जुगाद, राम रसायन एहो मन माता, सर्व रसायन गुरमुख जाता, भगत हेत गुर चरण निवासा, नानक हर जन के दास संदासा, आसा महला पहला, तन बिनसै तन का को कहियै, बिन गुर राम नाम कतल हैयै, राम नाम तन संग सखाई, अहनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो, आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ, कनक कामनी हेत गवारा, दुबदा लागे नाम विसारा, जिस तू बख्शे नाम जपाए, दूत ना लाग सके गुण गाए, हर गुरदाता राम गोपाला, जो पावे त्यों रख दयाला, गुरमुख राम मेरा मन पाया, रोग मिटे दुख ठाक रहाया, अवर ना औखद तंत ना मंता, हर हर सिमरन किल विख हंता, तू आप लावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा तार, रोग परम भेद मन दूजा, गुर बिन परम जपै जप दूजा, आद पुरख गुर दर्शना देख, विण गुर शब्द जन्म के लेख, देख अचरज रहे बिस्माद, काट काट सुरनार सह समाद, भरपुर तार रहे मनमाही, तुम संसार अवर को नाही, जाकी भक्त हित मुख नाम, संत भक्त की संगत राम, बंधन तोरे सह त्यान, छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वचल भगता हर संग, नानक मुक्त पै हर रंग, आसा महला पहला एक तुगी, गुर सेवे सो ठाकर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, होमे डन सह राजा मंगे दान, बंधन सवदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन सासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए,
ਬੰਧਨ ਬੇਦਬਾਦ ਹੰਕਾਰ, ਬੰਧਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਰਕਾਤੀ ਮੁਨੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਨ ਹਦੂਰ, ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇਸ ਰਹਾਓ, ਜਦੋਂ ਸੀਆਂ ਵੀ ਆਹੀਆਂ, ਲਾੜੇ ਸੋਹਨ ਪਾਸ, ਹੀ ਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ, ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ, ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਚੱਲੇ ਚਿਮਕਣ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਬੈਠੀਆ, ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਣ ਸੇਜੜੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਗਲ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ, ਟੁੱਟਣ ਮੋਸਰੀਆ, ਧਨ ਜੋ ਬੰਦੋ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਪਾਵੈ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਸਾਹਾ ਸੁਰਤ ਸਵਾਈ ਗਵਾਈਆ, ਰੰਗ ਤਮਾ ਸਹਿ ਚਾਏ, ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਕਤ ਖੁਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਏ, ਚੌਕੇ ਬਿਨ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਟਿਕੇ ਕੱਢੈ ਨਾਏ, ਰਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਏ, ਇੱਕ ਘਰ ਆਵੈ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੁੱਛੇ ਸੁਖ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬੈਬੈ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਥੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਕੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਪੇਰੀ ਸੈਨਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦਗਾ ਡੇਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆ ਮੋ ਬੰਕੇ, ਐਥੈ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ, ਇਹੋ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ, ਇਹ ਕੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ, ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੈ ਭਾਈ ਰਹਾਓ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਘਰਦਾਰ ਮੰਡ ਮੈਲਾ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਬੰਕਸਰਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣ, ਜਿਸ ਵੇਖ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ, ਹੋਈਆ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਈ, ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੂਤੀ, ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਜ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ, ਖੁਸਲੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ, ਕਿਨ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਪਈ ਲੜਾਈ, ਰਣਮੈ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕਤਾਨ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸ ਚੜਾਈ, ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹਿ ਫਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ, ਪਟਿਆਣੀ ਠਕਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਨ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਸ ਮਸਾਣੀ, ਜਿਨਕੇ ਬੰਕੇ ਕਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕਿਉ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਨੋ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤੈ ਜਾਈ ਰੁਆਈ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਕਸੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ, ਜੈਸੇ ਗੋਇਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਆਦਮੀ ਬੰਧੈ ਕਰਬਾਰਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੂਤੇ ਹੋ, ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਰਹਾਓ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਰ ਬਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਪਵੈ ਜੀਓ ਚਲਸੀ।

कौन रोई, धंधा पिटो पाई हो तुम कूड़ कमावाओ, ओहो ना सुनई कत ही तुम लोग सुनावाओ। जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा लै चलिया के संपै नाले, ता तन संचो देख के बुझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो, मत पछो तावो, औगुण छोड़ो गुण करहो, ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर, वैसी किरस कमावो, तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझे बिचारा, नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाड़ चलदी आई, ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूडियां को निमी मेंडा, जे तुद पावै साहेबा तू मैं हो तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम, हेको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर, गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना, अंतर वसना जाननी कड़ ब्रह्म लुकाना। एक तप सी बन में तप करे, नित तीर्थ वासा आप न चिन्ह तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द ना छूट ही परम आवे जावे। एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे, नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाण, नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला। मनसा मनै समाए ले, पहो जल सच तरना या जुगा दयाल, तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाय, गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे, गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारी हर सिंह बने आई। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावै, मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई, अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल मैं केता राखी है अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया, नानक नाम ना विसरै मथ अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चलन हार वाट वटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया। ममता मोह विसर्जे अपने कर आया रहाओ। सच मिले सचियार कू ना पाई है, सचे सोच तलाए बहु ना आई है। मोया कहो क्या रोवो, रोए ना जान हूं। रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं, हुक्मी वजो लिखाए आया जानिए। लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणिए, हुक्मी पैंदा जाए दरगह पानिए। हुक्मे ही सरवार बंदर बाणिए, लाहा सच न्याओ मन वसाइए। लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याइए, मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए। ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए, साहेब हृदय वसाए न पछोता वही। गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है। मैं तुझ बिन अवरना कोए नजर निहाली है। आसा महला पहला। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरी आवला। सच टिके कर आए शब्दो तावला, जै देखा तै सोए अवरना जानिए। गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई। चलै सदर जाए अंक समावई,
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ, ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਪਰ ਨਾਲ ਬੁਡਾਵੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਖੀਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਈ, ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਸ਼ਾਈ।

पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगदरड़ाए। मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया दरगे पत पाए, आसा महला पहला। रूड़ो ठाकुर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाइये पग निर्बाणी। मैं ओ लगिया ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यो रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, भाणे मन पाई है मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। भाणे पत पाई है साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तै रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावे, पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुखियां दे ना चेतई क्यों दर्शन पाए। तां जग आया जानिए लाच साचे लिव लावे, तां जग आया जानिए साचे लिव लाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए।

मामूल है। तू उत्तम हो नीच सेव कांडिया, नानक नजर करे हो मिले सचवांडिया। आसा महला पहला, आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई, जनमरण का दुखण निस साधोई। बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतराई, सतगुर साधना सेवया हर भगतना पाई रहाओ। आवन जावन तौर है पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन सह परम पूरा। संत जना को मिल रह तन तन जस गाए, आद पुरख परंपरा गुरमुख हर पाए। नटुए संग बनाया बाजी संसारा, खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा। हाँ मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सोजने गुरशब्द विचारा। ज्यो अंदले हथ टोहनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निस दौत सवार। ज्यो तू राख त्यों रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन्म द्वारा। जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुरतारे। आसा महला तीजा, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शास्त्र वेद सिमरत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्वेडाणी। ता के चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी। रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राण आधारी। ता के रूप न जाही लखणे क्या करे आख विचारी। तीन गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरिया खानी। कर्म हुआ ता परम पद पाई है कथे कथ कहानी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जा को नजर करे तू अपनी साई साई समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती अवन जानी। जात पावे ता गुरमुख बूझै, होर मनमुख फिर आनी। चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए, पड़ पड़ करे विचारी। ताका हुक्म न बूझै बपड़ा, नरक सुरग अवतारी।

ਖੱਖੈ ਖੁੰਦਕਾਰ ਸਹ ਆਲਮ ਘਰ ਖਰੀਦ ਜਿਨ ਖਰਚ ਦੀਆ ਬੰਧਨ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਬੰਧਿਆ ਅਵਰੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੱਗੈ ਗੋਏ ਗਾਏ ਜਿਨ ਛੋਡੀ ਗੱਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਭਇਆ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ ਚੰਨ ਵਾਹੈ ਤਈ ਕੀਆ ਕੱਗੈ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਜੇ ਘਾਲੈ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਗ ਰਹੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੈ ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੈ ਚੱਚੈ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਜੁਗਾ ਜੋ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਆਪਥੀਆ ਛੱਛੈ ਛਾਇਆ ਵਰਤੀ ਸਭ ਅੰਤਰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮ ਹੋਵਾ ਭਰਮ ਉਹ ਪਾਏ ਭਲਾਈ ਅਨ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਵਾ ਤਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜੱਜੈ ਜਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਾਚੈ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਪੀਖ ਭਵੇ ਆਏ ਕੋ ਲੇਵੈ ਕੋ ਦੇਵੈ ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿਛ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਆ ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਜੋ ਜੀਆਂ ਕਰਜ ਕਪਿਆ ਨਿਯੈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਏਕ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਤ ਕੇ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਜੂਐ ਜਮ ਨਾ ਹਾਰੋ ਆਪਣਾ ਭਾਜ ਪੜੋ ਤੁਮ ਹਰ ਸਰਣਾ ਠੱਠੈ ਠਾਂਡ ਵਰਤੀ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਚਰਨੀ ਜਨ ਕਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਡੱਡੈ ਡੰਫ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਸਭ ਚਲਣਾ ਤਸੈ ਸਿਰੇ ਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਿਆ ਟੱਡੈ ਟਾਹਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਣ ਦਰ ਕਰੇ ਅਣਾਣੈ ਰਵਤ ਰਹੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਅਮ ਲਾਏ ਕਰਤਾ ਪੁਨਰਭ ਜਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੱਤੈ ਤਾਰੂ ਪਵ ਜਲ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਰ ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਹਮ ਬੁੜਸੋ ਤਾਰ ਲੇਹ ਤਰ ਨਰਾਇਆ ਥਥੈ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸੋਈ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਆ ਕਿਆ ਭਰਮ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਐ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ ਦੱਦੈ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ ਤਦੈ ਧਾਰ ਕਲਾ ਜਿਨ ਛੋਡੀ ਹਰ ਚੀਜੀ ਜਨ ਰੰਗ ਕੀਆ ਤਿਸਦਾ ਦੀਆ ਸਭਨੀ ਲੀਆ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਨੰਨੈ ਨਾਹਾ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ ਨਾ ਡੀਠਾ ਨਾ ਸੰਮਲਿਆ ਗੱਲੀ ਹੋ ਸੋ ਹਗਣ ਭੈਣੇ ਕੰਤ ਨ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਪੱਪੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਫਫੈ ਫਾਹੀ ਸਭ ਜਗ ਫਾਸਾ ਜਮਕੈ ਸੰਗਲ ਬੰਧ ਲਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਬਰੇ ਜੇ ਹਰ ਸਰਨਾਗਤ ਭਜ ਪਿਆ ਬੱਬੈ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪ ਲੱਗਾ ਪੱਬੈ ਭਾਲੈ ਐਸੇ ਫਲ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਕਉ ਪਉ ਪਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਫਿਰੈ ਨਾ ਚੇਤੈ ਮੂੜੇ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਫੇਰ ਪਿਆ ਮੰਮੈ ਮੋਹ ਮਰਨ ਮਧਸੂਦਨ ਮਰਨ ਪਿਆ ਤਪ ਚੇਤਵਿਆ ਕਾਇਆ ਪੀਤਰ ਅਵਰੋ ਪੜਿਆ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਵਿਸਰਿਆ ਯਈਐ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੀ ਕਦੀ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਹਰਾਰੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜੇਤੇ ਕੀਏ ਜਨਤਾ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਧੰਦੈ ਸਭ ਲਾਏ ਕਰਮ ਹੋਵਾ ਤਿਨ ਨਾਮ ਲਿਆ ਲੱਲੈ ਲਾਏ ਧੰਦੈ ਜਿਨ ਛੋਡੀ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਮਕਰ ਸਹਿਣਾ ਭਾਣੈ ਤਾਂ ਕੈ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਵਵੈ ਵਾਸਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਜਿਨ ਵੇਸ ਕੀਆ ਵੇਖੈ ਚਾਖੈ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਹਿਆ
अड़ाड़े राड करे क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होवा तिसे त्यावो सच समावो ओ सिविटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दाता जियो पाए जिन रिजक दिया हर नाम ते आवो हर नाम समावो अंदिन लाहा हर नाम लिया आयड़ा आप करे जन छोड़ी जो कुछ करना सो कर रहा करे कराए सबके जाने नानक सायर इव कहया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आयो अंगे सब जग आया काखे कंगे काल पाया रीरी लली पाप कमाने पढ़ अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरा सिर रया रहाओ सिद्धं आया ऐसमरै नाही नन्ने ना तुद नाम लया छजे चीजे एन समूड़े क्यों छूटे जम पाकड़िया बब्बे बूजे नाही मूड़े परम पुले तेरा जन्म गया अनहोंदा ना उतरायो पादा अवरी का पार तुद लया जजे जोत हर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेगा एक शब्द तू चीने नाही फिर यूनी आवेगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरानो ना सिखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चटड़िया ससे संजम गयो मूड़े एक दान तुद कुथाए लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत तान खा दे तेरा जन्म गया ममे मत हिर लई तेरी मूड़े होमे वड्डा रोग पया अंतर आत्मा ब्रह्म न चीनिया माया का मोहताज पया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तू धर विसरिया पड़े गुणे तू बहुत पुकार है विण बूझे तू डूमुआ तत्ते तामस जल्यो मूड़े थथे थान प्रहट होवा कग्गे घर घर फिरे तू मूड़े ददे दाना तुद लया पप्पे पार न पवही मूड़े पर पई तू पलच रहा सचा आप खवायो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पव जल डुबो मूड़े माया विच गलतान पया गुरप्रसादी एको जाने एक कड़ी में पार पया ववे वारी आईया मूड़े वास देओ तुद विसरिया ए वेला ना लैसै मूड़े फिर तू जम कै वस पया चजे कदे ना चूरे मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई निगुरे का है ना बुरा तदे तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख होवे ता हर रस पीवे जुगा जुगंतर खाहे पया गगे गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुने सब बख्श लया हा है हर कथा बुझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पड़े तेता दुख लागे विन सतगुर मुक्त ना होई हरार राम चित कर मूड़े हृदय जन कह रव रया गुर प्रसादी जिनी राम पछाता निर्गुण राम तिनी बूझ लया तेरा अंत ना जाई लख आया कथ ना जाई हर कथया नानक जिन कौ सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया रागया सा महला पहला शंत कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिरली अल्लाह राम धन पिर नेहो कणा रसप्री दयाला राम तन पिरै मेला हुए स्वामी आ प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिर कै सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख विकसी मुंद मन यो माहो मुंद सहज उस लुनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मानता हर भाव है प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बेनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण ता प्रभ जाने गुणे वस अवगुण नसै तुद बाज एक तल रहना रहना साका कहन सुनना तीजय नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजय।
सखी हो सहेलड़ियो मेरा पिरवण जारा राम, हर नामो मन जड़िया रस मोलिया पारा राम। मोला मोलो सच कर टोलो प्रपा वैता मुंद पली, एक संग हर कह करे रलिया हाँ पुकारी दरखली। कारण कारण समर्थ श्री तार आप कार्य सारे, नानक नदरी तन सुहागनो सबदे अवसादारे। हम कर साचा सोहेलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम, रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम। अपना मन दिया हर वर लिया ज्यो पावे त्यों रावे, तन मन प्रया गै शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतर आईए, पाए मिले मन पाने नानक ठाकर मीत हमारे, हम ना ही लोकाने। आसा महला पहला अनहदो अनहद बाजै, रोण चुनकारे राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारे राम। आन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल कर पाया, आद पुरख परंपर प्यारा सतगुर लख लखाया। आसन बैसन थिर नारायण तित मन राता विचारे, नानक नामरते बैरागी अनहद रोण चुनकारे। तिते अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम, सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम। सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना, तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना प्रदाना। जप तप कर संजम थाकी हठ निकरै नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागर औरत नागर तित रतन कनेरे राम, कर मजनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल लाए जां प्रपाए पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिख्या ताजो सच नाम और तारे। हम मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला, नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुरु गोपाला। हाँ बन बनो देख रही तृण देख सवाया राम, तिर पवनो तुझे किया सब जग सवाया राम। तेरा सब किया तू थरतिया तो समान को नाही, तू दाता सब जाचक तेरे तू दिन के सालाही। अन मंगया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा, ना राम नाम बिन मुक्त ना होई नानक कहे विचारा। आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन राता, राम प्यारे राम सच साहेबो आद पुरख परंपरो तारे राम। अगमा गोचर अगमा गोचर अप्रिया पारा, पार ब्रह्म प्रदानो आज जुगा दी हैपी होसी अवर झूठा सा मानो। कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है, नानक गुरमुख शब्द पछाण इस नाम ते आई है। मेरा मनो मेरा मनु मानिया नाम सिखाई राम, हम मैं ममता माया संग न जाई राम। माता पित पाई सुत चतर आई संग न संपै नारे, सायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारे। आद पुरख एक चल दिखाया जै देखा तै सोई, नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सोई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साज संभाले राम, आवगण मेड़ चले गुण संग मनाले राम। आवगण पर हर करनी सारी दर सच्चाई सचियारो, आवन जावन ठाक रहाए गुरमुख तत् विचारो। साजन मीत सुजान सखा तू सच मलै वड्याई, नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन दाता राम, मंतन रव रया जग जीवनो दाता राम। जग जीवन दाता हरमन राता सहज मिलै मेलाया, साध सवा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया। हर कीर भगत रते बैरागी चूके मोह प्यासा, नानक हम मैं मार पतीने विरले दासो दासा। राग आसा महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू सबनी थाई जिथे हों जाई साचा सिरजनहार जियो
सबना का दाता कर्म विदाता है, दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी की ताजा का होवे, कोट कुटंत्र पापा के रे कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कटकट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते वरले संसार जियो, तिन जम नेड़ ना आवे गुर शब्द कमावे, कबो ना आवे हार जियो, ते कबो न हारे हर गुण सारे, तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका, जो हर लागे पावे, गुरमत हर रस हर फल पाया, हर हर नाम पुरत हार जियो, जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते वरले संसार जियो, जिन जग तो पाया तुंद लाया तसैब तो कुर्बान जियो, ताकि सेव करी जय लहाली जय, हर दरगह पाई है मान जियो, हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाण ओह नवनिध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख बखाण, अहनिस नाम तिसह काली जय, हर उत्तम पुरख प्रधान जियो, जिन जग तो पाया तुंद लाया हो तसै विटों कुर्बान जियो, नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवे, मान से जन जाहे जियो, तिन फल तोटना आवे जात पावे, जे जो केते जाहे जियो, जे जो केते जाहे स्वामी तिन फल तोटना आवे, तिन जरा ना मरना नरक ना परना, जो हर नाम ते आवे, हर हर करे से सुख नाही नानक पीड़ ना।

ज्यों पावै त्वै चलाए जियो। एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवै मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। गुरपूरै हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभर राया राम राजे। हाँ मांगाऊं सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा। गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुरभाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा। पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली। मेरा मन तन्ना माधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने। हाँ मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुर के राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके। हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा। हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे। धन धन वन जा रावण जह गुर शाहो सा वासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे। सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वन जा रहा राम राजे। सब भांडै तुदै साजिया विच वस्त हर थारा जो पावै भांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करै विचारा। जन नानक हर बख्शिया हर भगत भंडारा हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे। हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो। हम मूर्ख किशु ना जान क्यों पावै पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनिहारो। ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम पूल विगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए। आसा महला चौथा। जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहु ना चलिया जन नानक नाम आराध्या आराधार मिलिया। जिनी ऐसा हर नाम ना चेतियो से काहे जगे आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए। तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे। किश हाथ किसै दे किश नाही सब चले चलाए। जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हौं च आया हौं च गया, हौं जमया हौं च मुआ, हौं दिता हौं च लया, हौं खटिया हौं च गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं च पाप पुन विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भरीऐ हौं विच धोवै, हौं जाति जन सी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मूख मूत की सार ना जाना। हौं विच माया हौं छाया, हौं मैं कर कर जन तो पाया। हौं मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै।

अंडज जेरज उत्पजा खाणी से तजा हा सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा। नानक जन तो पाए कह संभाले सब नाहा जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा। सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सचे नाम बिनु क्या टिका क्या तग महला पहला। लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण। लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिले सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास। नानक लेख एक गल होर हों मैं चखना चाख महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेह किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पहरै एनस कहरै मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वै किश थाए ना पाई। रह बे बाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाना है फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए। नानक नजर करे सो पाए आसां देसे ते नह केवल हमें शब्द जलाए। पौड़ी भगत तेरे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे। नानक करमा बाहरे दर ढो ना लैनी ताम।

निर्जास। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म ना चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणै कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास।

नानक सेवक कांडी है, जे सेती खसम समाए पौड़ी, नानके अंत न जापनी, हर ताके पारा वार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया, एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हों कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया।

दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

बजावनहारो कहां गयो जिनेहो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिगल पए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता। थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते। मृतक पए दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे। आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया। मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुरप्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई। सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा। एह सरपनी ता की कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई। एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा। आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए। राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यों भूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए। सत संगत मिल बबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई। सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई। आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण कर खबर ना पाई। क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ। एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती। चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत रामै नाम बसाई आश्चर रह ना कथू जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त ना होई। आसा पहला पूत पिछैरी माई गुर लागो चेले की पाई। एक अचंबा सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ। जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूजै राम रमत ते सबके सूजै। बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। दस मास माता उदर राखिया।

राम राय सो दूलो पायो, अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए, कोट ते तीसियो जाना। कह कबीर मोय ब्याह चले है, पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे। सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे, ओ किन बिद रहन रहो रे। सेजा रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी। बड़े भाई कै जब संग होती, तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नितताना, कंठ जने उतमारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसन

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन, रहाओ नैन देख पतंग उर्जै, पस ना देखै आग, काल फासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संगार है, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देखे, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेखे रहाओ। साज कते बखाने, अल्लाह नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल कट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

ठाकर कहो न वेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहा करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर अंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड़, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कहो की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा

छूट बो कमन गोनो आसा। हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागरो, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देव दूध पी आया, तव जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर सो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख प्रमन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया, ध्यान मान मन एक मए। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रपहचानिया। धन है तर पाया तरणी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग, नाम देव मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास टोवंता।

चैतन्य त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओहो कर कर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइया तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, बिबै ना जान सकोई। जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोली है शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दियां शे मां तुड़न दियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै कट अंतर पूजा होए पूजा कीच नाम ते आई है बिन नावे पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवै सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जा की भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिंस निर्मल मन मुख रहने आधार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रहै जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀਉ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ। ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਨਾਮ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, तां का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसा कोसा। तिस पाछा बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन में सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंतना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खट करमा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनान हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी। हर हर तार पुराना, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नमनिद पाई। हाथ चरयो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे लाद खजाना, गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जां का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो। हर हर सदा भजहो जगदीश रहाओ। सतगुर तुम कहो होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता। रंग तमासा पूर्ण आसा, कबह ना व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा एहो मन होवो, हर चरणा हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदे चात्रक मौला। गुजरी महला पंजवा, मता करै पछम कै ताई। पूर्व ही लै जात,
ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ ਆਪਣ ਹਾਥ ਮਤਾਂਤ ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਯਾਤ ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ਰਹਾਓ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋੜਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ ਲਸਕਰ ਨੇਵ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਜੰਪਰ ਉਠ ਸਿਦਾਸ ਹੋਇਆ ਨਨ ਮਨ ਹਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾ ਨਾਤ ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋਡਿਓ ਸੋਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਖਾਤ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤੇ ਜਨਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਜਨ ਜਪਿਓ ਤਿਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਮਮਤਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਟੇ ਹਰ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਾਇਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਹਾਓ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਓ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋ ਜੁਗਤ ਨੀਸਾਨੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਥਾਈ ਆਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰੰਗ ਰਵਿਓ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਕਹਿ ਕਰ ਆਇਆ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਖਨ ਭੀਤਰ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਭਰਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਟੈ ਰਹਾਓ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਕਿਤਹੀ ਕਾਮਨਾ ਆਇਆ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੰਗਮਨ ਵਾਇਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਲਾਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਜੀ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪੁਜੀਆ ਰਾ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਸੂਜੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ ਭੈ ਪੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹੋ ਪਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਚ ਪਦਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਚਿੱਤਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗ ਨ ਕਛ ਹੂੰ ਜਾਇਆ ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰਨਾਮਾ ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ ਰਹਾਓ ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਬੰਧ ਪਸੁਤ ਭਾਈ ਸਗਮੰਤਾ ਰਚ ਹਸਿਆ ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰਿਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੀ ਸੰਪੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ਪਹਾੜੀ ਕਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਪਇਓ ਬੇਰਾਨਾ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਭਾਹੇ ਗਹੁ ਕਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਮੀ ਤਾਈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ ਨਾਮ ਸੰਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰੜਾਇਆ ਬਿਨਸਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਹਰ ਜਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਛੂਟੇ ਰਹਾਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन कबीर दास रो मुक्त पयो चमयारो। गुजरी महला पंजवा है नाही को बूझन हारो। जाने कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गहना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ। आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता नानक को प्रभ पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूर तो अवर सियानप जन को कछु ना आयो। जह जह अवसर आए बन्यो है तहां तहां हर त्यायो। प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ। जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो। शरण पर्यो नानक ठाकर की अपह दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन रातियां रादो प्यारो निमख ना की जय ढीला। संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हर ठीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह के संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मनोह जंगीला। मिलबे की महिमा वर्ण ना साको नानक परे परीला। गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपने ही। तीन देव अर कोड़ते तीसा तिन की हैरत कश ना रही। बलवंत ब्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही। कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवा दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया। हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सबका किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम होत जावे प्रभ से तिरंग लाई। मन को एह उपदेश दृढ़ावे सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावे नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाए ना करी। राजा रंक करे खिन पीतर नीचे जो तरी। त्याई है अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करी है जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का
बसो मेरे मन माही चरण कमल।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही कौ प्रभ आही, नानक टेक पई करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा, ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै, मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता है, जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा, अब जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है, जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है, जाते काल न बिरथी जाई है। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा त्याई है रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास है पैज रखाई है। गुजरी महला पंजवा, विश्वंपर जीवन को दाता, भगत परे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, होए सहाय जिस तू राखै, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा, जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर, अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै,

केते उदर भरन कह ताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई, ऐ जी काल सदा श्री उपर ठांडे, जन्म जन्म वहराई, सच है शब्द रते से बाचे, सतगुर बूझ बुझाई, गुर शरण आई जोहे ना साकै, दूत न सकै संताई, अवगत नाथ।

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, सेवकर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भाव है से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावे कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरे, सावेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए।

केतक गनी ना जाइए गाना सको सिका। नामन मैं तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता, इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा, करमन सिर करमा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा, हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बुलावे त्यो बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साह संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवा, घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नाथ नर हर दीन बंधव, पतत पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुंडित, सबर स्वामी सेव, हर गोपाल गुर गोबिंद, चरण सरण दयाल केशव, तार जग पव सिंध रहाओ, काम क्रोध हरण मद मोह दहन, मुरार मन मकरंद, जन्म मरण निवार धरणी तार, पत राख परमानंद, जलत अनक तरंग माया, गुर ज्ञान हर रिद मंत, शेद अहम बुद्ध करना मैं, चिंत मेट पुरख्यानंत, सिमर समर्थ पल मुहूर्त, प्रभ ध्यान सहि समाध, दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण, जाचिए रज साध, मोह मिथन दुरंत आसा, बासना बेकार, रख धर्म परम बिदार मंते, उदर हर निरंकार, तनाड आड़ पंडार हर निद, होत जिना ना चीर, खल मूड खल मुग्ध मूड कटाक श्री तर, पय गुणमत तीर, जीवन मुक्त जगदीश जप मानो, तार रिद प्रतीत, जी दया मया सर्वत्र, रमण परमहंस रीत, देत दर्शन सरवण हर जस, रसन नाम उचार, अंग संग भगवान परसन, प्रभ नानक पतत उदार, गुजरी की वार महला तीजा, सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा, एहो जगत ममता मोवा, जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे, ओए सदा सदा जन जीवते, जो हर चरणी चित लाए, नानक नदरी मन वसै, गुरमुख सही समाए, महला तीजा, अंदर सहसा दुख है।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हम मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेख, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईये खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनों आख सुनाई है जा कर

आप दया कर दे, नानक वाह वाह गुरमुख पाई है, अंधन नाम लाए महला तीजा। बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लोची है, विण कर मैं ना पाया जाए। जिन्ना अंतर लो विकार है, दूजे पाए खुवाए। जमन मरण ना चुकई, हम मैं विच दुख पाए। जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया, सो खाली कोई ना है। तिन जम की तलब ना हो वई, ना ओए दुख सहाहे। नानक गुरमुख उबरे, सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी ढाडी तिसनो वाखी, जे खसमै तरे प्यार। दर खड़ा सेवा करे, गुरसबदी विचार। ढाडी दर कर पाए सी, सच रखे उरतार। ढाडी का महल अगला, हर कै नाए प्यार। ढाडी की सेवा चाकरी, हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा। गुजरी जात गवार, जा सहो पाए अपना। गुर कै शब्द विचार, अंधन हर जप जापना। जे सतगुर मिले तिस पहो पवै, सा कुलवंती नार। सा हुकुम पछाणै कंत का, जिसनो कृपा कीती करतार। ओहो कुचजी कुलखणी, पर हर छोडी पतार। पै पै मल कटियै, निर्मल होवै शरीर। अंतर प्रगास मातूतम होवै, हर जप गुणी गहीर। पै विच बैसै पै रहै, पै विच कमावै कार। ऐथै सुख वडियाईया, दरगै मोख द्वार। पै ते निरपौ पाईऐ, मिल ज्योति ज्योति अपार। नानक खसमै भावै सा पली, जिसनो वापे बख्शे करतार। महला तीजा। सदा सदा सालाही है, सच्चे को बल जाओ। नानक एक छोड़ दूजे लगे, सा जेवा जल जाओ। पौड़ी अंसा अवतार उपायोन, पाओ दूजा किया। जो राजे राज कमाव दे, दुख सुख पिड़िया। ईश्वर ब्रह्मा सेव दे, अंत तिनी ना लिया। निरपौ निरंकार अलख है, गुरमुख प्रगटिया। तिथै सोग विजोग ना व्यापई, अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछे आवण जाण है, जेता है आकार। जिन एहो लेखा लिखिया, सोह आ प्रवाण। नानक जे को आप गणाएदा।

तो कड़ी मोहत है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीरवरियाम के ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवा किलविख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजानिया, जिता जन्मया पार आप पछानिया, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू कमावदे।

बन महिया अजहो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रभुडो अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गत बिन रहन बिहाई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई, भरम भुलाई जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कह नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बुझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखी अलो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनतीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरे थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

अंतकाल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं भाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजून।

चले कित गली, हर के संत बतावो मार्गो, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अरे, ए चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर ढोल मिली। एको प्रेयो सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावलो, तिस कारण हर ढोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

ठाकर प्रभ तुमरी तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बरिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जूठारी। हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ेयारी। हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी रहाओ। जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दर गह है प्रष्टि। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाछ शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुरचरणी चित लाइय, प्रभ होए किरपाल कमर परगासे, सदा सदा हर त्याय रहाओ। अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है, घट अवघट रविया सब ठाई। हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है, उस्तत कर है सेवक मुन केते। तेरा यंत्र कतहू पाई है, सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सदबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहे ओ रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहाओ। कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी, कब साधु संगत होई है। कोय न मिटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जे प्रसाद सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अवमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कह सोई पल मानो, नाहिन का बोल करत, निमख ना बिसरो ही ए मोरे ते। बिसरत जाई हो मरत, सुखदाई पूर्ण प्रभ करता, मेरी बहुत अयान पजरत। निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौं, आनंद रूप स्वामी परत। देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं, गावत सुनत जब तो उधार है, बरन्या बरना।

जहते उपजो तही समान्यो, जहते उपजो तही समायो, एह बित जानी तब हूं, जहां जहां एह देही तारी, रह ना पायो कब हूं। सुख आयो पै परम बिनासे, कृपाल हुए प्रभ जब हूं, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, सा संग तज लभ हूं। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अत नाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अन के अडंबर माया के बरथे, तासों प्रीत कटावो, ज्यों अपनो स्वामी सुख मान है, ता मैं शोभा पावो। दासन दास रेण दासन की, जहन जन की टहल कमावो, सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तौ प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचारियो रहाओ। कोट प्राद मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महा सुख पायो, चिंता रोग बिदारियो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिसारियो। माया बंद काटे कृपा निद, नानक आप उधारियो। देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन करावन हर स्वामी, नानकी ओट गही रहाओ। आप मेट पै सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परमा देरा लही। जान परवीन स्वामी प्रभ मेरे, शरण तुम्हारी यही। खिन मैं थापो थप नहारे, कुदरत की मना पही। देव गंधारी महला पंजवा, हर प्राण प्रभु सुखदाते, गुर प्रसाद काहू जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल ना खाते, रंग तुम्हारे लाल पय है, राम नाम रस माते, महा किरबख कोट दोख रोगा, प्रभ दृष्ट तुहारी हाते। सोवत जाग हर हर हर गाया, नानक गुर चरण पराते। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ जत कत पेख्यो नैनी, सुखदाई जियन को दाता, अमृत जा की बैणी रहाओ। अज्ञाना देरा संती काटिया, जीदान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। कर्म धर्म किश उपजना आयो, नहीं उपजी निर्मल करनी, छाड़ सियाण पसंजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंधारी पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के फाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पया, तिना प्राप्त हो निदाना, जिनके कर्म लिखा। सेवड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम विसाहा। देव गंधारी पंजवा, मन कह अंकार अफारा, दुर्गंध पवित्र अपावन पीतर, जोधि सह सो शारा रहाओ। जिन किया ते सिमर प्राणी, जियो प्राण जन तारा, तिसह त्याग अवर लपटावै, मरजन मैं मुद गवारा। अंध कुंग गुंग पिंगल मतहीना, प्रभ राखो रखनहारा, करन करावन हार समरथा, क्या नानक जंत बिचारा। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ नेरे हूं ते नेरे, सिमरत आए गाए गुण गोबिंद, दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ। उधर देह दुलभ साधु संग, हर हर नाम जपे रहे, करी ना मोहत ना चसा बिलंबो, काल नित नित हेर, अंध बिलाते काडो करते, क्या नाही करते रह। नाम आधार दीजे नानक कहो, आनंद सुख घनेर, शके दो। देव गंधारी पंजवा, मन गुरमिल नाम आराध्यो,
सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बा दियो रहाओ। कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फा दियो। पाओ भगत गाए गुण गोविंद जमका मार्ग सा दियो। पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला दियो। बलिहारै नानक लख बेरा मेरे ठाकर अगम्यागा दियो। देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावै सफल आया जीवन फल तां को पार ब्रह्म लिबलावै। रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावै। नाम उचार करे हर रसना बहुन न जो नीत आवै। पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह आना दृष्टि आवै। नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावै। देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही उर जायो। इतनी ना बूझै कबहू चलना बिगल पयो संग मायो। रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक उपायो। लोभ सुने मन सो कर माने बेग तहा उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो। करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुर चरना काल मल डारन मन सुधारन ए आसर मोए तरना। रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना बिकसै मन होवे परगासा। बहुर ना गर्भ परना सफल मूर्त परसव संतन की एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है। चार पदार्थ आनंद मंगल निध सुख सहज सिद्ध लहिया। रहाओ मान त्याग हर चरणी लागो तिस प्रभ अंचल गही है। आंच ना लाग अग्न सागर ते शरण स्वामी की अही है। कोट प्राद महा अकिरत कान बहुर बहुर प्रभ सही है। करना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक ते शरण नहीं है। देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा। रोग सोग सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा। रहाओ जन्म जन्म के किल बिखनासे कोट मजन इशनाना। नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहित्याना। कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोर निरारे। जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे। शके तेन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रहो स्वामी मेरे मन ते कहो न डारो। रहाओ साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो। सब ते नीच आत्म कर मानो मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकर अबनासी कलमल सगले चारो। नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा। सुंदर ध्यान धार दर रैनी जी प्राण ते प्यारा। रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा। दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण भव जल उदर नहारा। आदि जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखै आधारा। तिन जन की धूर बांछै नित नानक।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है टिकन ना पावे बिन सतसंगत किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्स समाई है। देव गंधारी महला पंजवां ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर तरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ

तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां प्रभ एह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ। प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लइया। राग देव गंधारी महला पंजवां कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सदी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कतहूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थी ते सद थाए। देव गंधारी पंजवां दर्शन नाम कौ मन याचै भ्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांचै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुराछै। देव गंधारी पंजवां अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहु मद निरारे रहाओ। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवां हर जप सेवक पारे उतारियो दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवां कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवां कर पंजवां एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा आना समसर को लागे ढूंढ रहे हम ऊंचा रहाओ। बहु बेअंतत बड़ो बाह गाहरो था नहीं अगहूचा तोल ना तुलिया मोल ना मुलिया कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंधारी महला पंजवां मैं बहुविध पेख्यो दूजा नाही रीको
खंड दीप सब पितर रव्या पूरयो सब लो रहाओ। अगन अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवै सुन सो चार या सरम चार ब्रन्ना मुक्त पय सेव तो गुर शब्द रडाया परम पद पाया दुती गए सुख हो। कहो नानक भव सागर तरिया हर निद पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवां कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावै गो हर जी को द्वार मिल संगत तज अभमान कहो नानक पाए है परम निधान देव गंधारी पंजवा जानी ना जाई ता की गात रहाओ कह पे खा रहा हूं हाँ कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचर्द दिन रात अगम अगम ठाकरे आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कहन ना जाई पर परात देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अनक ओही रे एक समार रहाओ सफल मूर्त गुर मेरे माथे जत कत पेखो तत्ता साथे चरण कमल मेरे प्राण आधार समराथ्या था बड़ा पर मेरा कड़कड़ अंतर साहेब नेरा ताकी सरन आसर प्रभ नानक जाका अंतना पारा वार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे माने उल्टी रे साग स्यों कर उल्टी रे झूठै की रे झूठ प्रीत छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग ना छुटकी रे रहाओ ज्यों काजर पर मंदर राखेओ जो पैसा कालू खीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुर मिल छुटकी त्रिपटी रे मांगो दान किरपाल किरपा निद मेरा मुख साकत संग ना जुकसी रे जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पग्गा हेठ रुलसी रे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के समर्थ पंथ बिठले हों बल बल जाओ गावन पावन संतन तोरे चरण उमा कह पाओ रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं एक अनंत अनुपैठाओ रिद सिद्ध निद करतल जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ दया मया कृपा नानक कहो सुन सुन जस जीवाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग देव गंधारी महला नावा यह मन नैक ना कहो करै सीख सिखाए रहो अपनी सी दुर्मत ते ना टरै रहाओ मद माया कै भयो बावरो हर जस नहि उचरै कर परपंच जगत को डहकै अपनो उदर भरै सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नावा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंदप आरफुन गृह की नार रहाओ तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार आद करी को न रख करते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जाते हो ते उधार देव गंधारी महला नावा जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत रहाओ मेरो मेरो सब कहत है हित स्यों बांध्यो चीत अंतकाल संगी नह को ए अचर जहै रीत मन मूर्ख अजू न समझत सिख दे हार्यो नीत नानक पौजल पार पर जौ गावै प्रभ के गीत एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद।
ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਚੌਪਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ਭਯੰਗਨ ਬਸਰੀਆ ਅਨ ਕਿਉ ਭਰੀਆ ਤਉ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜਰੀਆ ਰਹਾਉ ਮਿਥਰ ਮੋਹਰੀਆ ਅਨ ਕਉ ਮੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਨ ਕਿਰੀਆ ਸਗਲ ਪਟਰੀਆ ਬਿਰਖ ਇਕੱਤਰੀਆ ਬਹੁ ਬੰਧ ਪਰੀਆ ਥਿਰ ਸਾਜ ਸਫਰੀਆ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਕੀ ਗਤਨੈ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ ਅਰਬਹੁ ਲੋਕ ਸਿਆਨੇ ਰਹਾਉ ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰੇ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖ ਨਾਵੈ ਜੈ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਆਪੈ ਦੇਖਣ ਹਾਰਾ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਅਗੰਤ ਅਪਾਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੇ ਸਭ ਜਗ ਪਰਮਾਇਓ ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਚਰਨ ਤਾਹੇ ਚਿਤ ਲਾਇਓ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ।

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम तपत नाकत बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना। अमें सरोवर पियो अमें सरोवरो पियो हर हर नाम आराम संतै संग मिले। जप पूर्ण काम आराम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरै आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तप तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला। हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला। अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइय, भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताइय। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुड़ कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कढ लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक शरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जां ते विछड़िया तिन्हां मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिनकिया तन साज, नानक शरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्द उतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नु आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रह सदा गुण गाए, विण कर मैं किने ना पायो, भौक मोए बिल लाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप परपंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरति, आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावनी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किने ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मनमुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मनमुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर पंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनों गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझै सरे। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हम मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रह समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप

अगै जाए, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथै कमावै सो मिलै, अगै पाए जाए महला तीजा। तुर खसमै का हुकुम पया, विन सतगुर चेत्या न जाए। सतगुर मिलिया अंतर रव रहया, सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का भउ गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वरतदा, आपे कथै ज्ञाना। कौड़ा किस न लगई, सब नाही पहना। उस्तत बरना सकिय, ससत कुरबाना। सलोक महला पहला। कली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा, ती जनूरी। जोरू जिन्ना दा सिकदार, महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे, तुम कहां तरन हार पौड़ी। सब केहो तेरे वस है, तुम सच्चा साहो। भगत रते रंग एक कै, पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर, रज रज जन खाहो। सब पदार्थ पाईयन, सिमरन सच लाहो। संत प्यारे पार ब्रह्म, नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा। सब किश हुक्मे आमदा, सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाने, अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनों कृपा करे रजाए। महला तीजा, सो जोगी जुग सो पाए। जिसनों गुरमुख नाम प्राप्त होए, तिस जोगी की नगरी सब को वसै। पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी। जिसकट प्रगट होए पौड़ी।

जिन जेवा रस न चखियो सा जेवा जल जाओ, अनरस सादे लग रही दुख पाया दूजे पाए। सबना नदर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे परजवे गोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर के शब्द मिलाए। मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिले सच नाम समाया। आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए। वढांस महला तीजा, सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सह सुभाए।

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जातकत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हवा। तेरे जी तू सदी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवां, तू जाणाए तां कोई जाणे, तेरा दिया नाम खाणे। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी। वढ़ांस

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है, जिथे जाए बहिया भला कहिए सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब

जाम ए चुका वहे गुरप्रसादी करो कृपा लेहो जम ओबारे जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा लाख्या पारा क्यों कर करो बेनंती हो आख ना जाना नदर करे ता सच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जाम आप बुझावे दुख भूख संसार की है सस हो चुकावे बिनवंत नानक जाए सहसा बुझे गुर विचारा वड्डा साहेब है आप अलख अपारा।

तरल जवानी, तरला जवानी आप पानी, इच मन की पूरी है। सारंग ज्यों पग तरै, ठिम ठिम आप आप संदूर है। श्री रंग राती फिरै माती, उद गंगा वाणी, बिरवंत नानक दास हरका, तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वड़हंस महला तीजा, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अपने पिर कै रंग रती मुइये, सोभावंती नारे, सच्चा शब्द मिल रहिए मुइये। पिर रावे पाए प्यारे, सच्चा पाए प्यारी, कंत सवारी, हर हर स्यों ने हो रिचाया। आप गवाया ता पिर पाया, गुर कै शब्द समाया। सात हन शब्द सुहावी, प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी। नानक सातन मिल लई, पिर आपे साचे साहे सवारी। निर्गुण मंत्रिये पिर देख अधूरे राम, गुरमुख जिनी रावया मुइये। पिर रव रया पर पूरे राम, पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे। जुजुए को जाता तन बाली भोली, पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता। जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया, हर सर रही परपूरे। नानक कामण सा पिर भावै, शब्दे रह हदूरे। सुहागणी जाए।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिउं रलिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाण कामण वड़ भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रलियाला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए वढांस महला तीजा गुरमुख सब

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाँ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जनवट पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मैं गुणी समाई राम गुण मैं गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनों एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिस दी वड्याई राम जो तिस दी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछू ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमै माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी है पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागे रसना राम रिविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरिजय पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करे पुकारा राम माया मोह अंतर मन लागे।

शरण आई राम अरदास करी गुर पूरे आगे। रख लेवो देहो बढ़ाई राम रख लेवो शरण आई हर नाम बढ़ाई। तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर शरणाई। जो हर मत दे साई उपजै होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम। आपे देह बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर चाखिया। दर सचै सदा है साचा सचै शब्द सुपाखिया। घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई। वडांस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम। हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा। वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवया सांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। हो जीवा सतगुर देख सर से राम। हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल परगासे हर नाम नवंग निद पाई। हों मैं रोग गया दुख लाथा हर सह समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई। सुख सतगुर देव मन परसे हो जीवा सतगुर देख सर से। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हाँ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम। हाँ मन तन काट काट तिस देई जो सतगुर वचन सुनाए। मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते देहो सतगुर चरण हम धूरा। कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। हर दानो हर दान देवै हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा। सेवक पाए मिले वडभागी जिन हर जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा हाँ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया। जिस कारण हाँ टूंडेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृढ़ हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हाँ गुरबिन खरी निमाणी। जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सिरेवै हम लागै तिन कै पाए राम। हर हर चरण सिरेवै तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ ते आया। तू वडदाता अंतर जामी मेरी सरदा पूए हर राया। गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आंदन राम गुण गाए। जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए। हाँ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम। हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नामा दारू राम। हर हर नाम मेरा प्राण सखाई तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे। हाँ वारी गुरसिख मीत प्यारे।
हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम। हरे आपे मेले करे सो होई राम। जो हर प्रभु आवे सोई होवे अवर न करना जाई। बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर न कोई। हरे आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञाना देर बिनासे। सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे। जिन कौ हर प्रभ कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया। मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम। हर नाम देवे मेरा अंत सिखाई राम। हर हर नाम मेरा अंत सिखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया। जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती वड़हंस महल्ला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम साबिन से हो मैं पापा राम। जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी सुखदाते दुखलाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हम मैं पापा। जप हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरुत पय शरीरा। अंदन सह समाद हर लागी हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर।

तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

बेखम पय अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे हे राम हो पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जन आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करता है हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतरजामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाण नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमती मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

मरण मुन सासुरिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखे साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखे आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लख्या पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिसो चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिर जिनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो, पूंडड़े नाम विसारिया बूढ़ड़े क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिख लद्या अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो, रूप न जाने सोहनिया हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी तो नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै हंस गया गहनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलियो सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानिए फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे, हाउ मुठड़ी तंदे तावनिया फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कर कर कंत महेलिया रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना हाउ रह सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पालिए कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कह वखाणो, जिन जग थाप बताया जालो सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना अद पंदे है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी कर हुक्म छडावन हारो, अज कल कर दिया काल व्यापै दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ

ज्ञान में होनी मुठी बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो रोवै औगुण आरी झूठी पिर जग जीवन किसनो रोई है रोवै कंत विसारे सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे सो पिर सच्चा सद ही साचा है ना यो मरे ना जाए भूली फिरे तन एणिया रंड बैठी दूजे पाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए आव कटे तन शीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जमकाल ना सूजे माया जग लूजे लब लोभ चित लाए सो पर साचा सद ही साचा ना एहो मरे ना जाए एक रोवे पिरे विशुनिया अंधी ना जाने पिर नाले गुर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा समाले पिर अंतर समाले सदा है नाले मनमुख जाता दूरे एहो तन रुले रुलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सातन मिले मिलाई पिर अंतर सदा समाले एक रोवे पिरे विशुनिया अंधी ना जाने पिर है नाले वडहंस महला तीजा रोवे पिरे विशुनिया मैं पिर सचड़ा है सदा नाले जिन्नी चलन सही जाने सतगुर सेवै नाम समाले सदा नाम समाले सतगुर है नाले सतगुर सेव सुख पाया सबदे काल मार साची वरतार फिर आवन जान ना होया सच्चा साहेब सच्ची नाई वेखे नजर निहाले रोवे पिरो विशुनिया मैं पिर सचड़ा है सदा नाले प्रभ मेरा साहब शब्द ऊंचा है के मिला प्रीतम प्यारे सतगुर मिली ता सहज मिली पिर राखिया उरतारे सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे सतगुर ते पिर दिसै माया मोह का कच्चा चोला तित पैदै पग खिसै पिर रंग नहीं पिर रंग राता सो सच्चा चोला तित पैदै तिखा निवारे पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे मैं सदा रावे पिर अपना सचड़ै शब्द विचारे सच्चा शब्द विचार।

ज्ञान रतन काट चानन होवा नानक नाम प्यारो सचड़ा आप जगत उपाया गुरबिन कोर अंधारो। वड़हंस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचा आए गुर राखे से उबरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै आवै जावै अंत गए पछतावै बिन नामै सुख ना होई ऐथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई। जमपुर कोर अंधार महागुबार नात थै पैण ना पाई एहो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचै आई। काया कंचन ता थी जा सतगुर ले मिलाए भ्रम माया विचों कटिया सचड़ै नाम समाए सच्चै नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रह दिन राती विचों हो मैं जाए। जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिनकै हो लागो पाए काया कंचन ता थी जा सतगुर ले मिलाए सो सच्चा सच सा लाही है जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर परम भुलाणिया क्या मोह देसन आग्या जाए क्या देन मोह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला पिरकै अंक समाए। तिस जेवड़िया वर ना सूझई किस आग्या कहिया जाए सो सच्चा सच सा लाहिया जे सतगुर दे बुझाए जिनी सचड़ा सच सा लाहिया हाँ तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चे सरन आए सच्चे सहज सुभाए नाम निरंजन अगम्या गोचर सतगुर दिया बुझाए। आंदन भगत करै रंग राते नानक सच समाए जिनी सचड़ा सच त्याया हाँ तिनकै लागो पाए। वडहंस की वार महला चौथा लला बह लीमा की धुन गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा। शब्द रते वडहंस है सच नाम उर तार सच संग्रह सद सच रह सच्चे नाम प्यार। सदा निर्मल मैल न लगई नदर कीती करतार नानक हौ तिन कै बलिहारण जो अंदन जपै मुरार महला तीजा। मैं जानिया वडहंस है ता मैं किया संग जे जाना बग बपड़ा ता जन्म ना देंदी अंग महला तीजा। हंसा वेख तरंदिया बगा पे आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तले उपर पाओ पौड़ी। तू आपे ही आप है आप कारण किया तू आपे आप निरंकार है कोई अवर ना बिया तू करण कारण समरथ है तू करे सोथिया। तू अणमंगया दान देवना सब ना हां जिया सब आखो सतगुर वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा। पै विच सब आकार है निरपौ हर जियो सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथै पौ कदे ना होए। दुश्मन दुख तिसनो नेड़ न आवै पोहे न सकै कोए गुरमुख मन विचारिया जो तिस पावै सो होए। नानक आपे ही पत रख सी कार्ज सवारे सोए महला तीजा। एक सज्जन चले एक चल गए रेंदे पी फुन जाहे जिनी सतगुर ना सेवो से आए गए पछताहे। नानक सच रते से ना विछड़ै सतगुर सेव समाहे पौड़ी। तिस मिलिया सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हम मैं विचो मारी। सो सतगुर पूरा तन तन है जिन हर उपदेश दे सब सिरट सवारी। नित जपियो संतो राम नाम पौ जल बिखतारी गुरपूरै हर उपदेसिया गुर विटड़ो हाँ सदवारी सलोक महला तीजा।
सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं सुखसार ऐथे मिलन वडियाइया दरगह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनण सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाए प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सच्यार नानक सतगुर की सेवा सो करै जिसनो नजर करै करतार। महला तीजा होर विडानी चाकरी त्रिग जीवन त्रिगवास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास बिख खाना बिख पहनना बिख के मुख गिरास ऐथे दुखो दुख कमावना मुया नरक निवास मन मुख मेह मैले शब्द ना जाननी काम क्रोध विनाश सतगुर का पाओ छोड़िया मन अठ कम न आवै रास जंपुर बदे मारिया को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवो साध जन जिन हर हर नाम दृढ़ाया सो सतगुर पूजो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया ते सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया। श्लोक महला तीजा सतगुर मिलिया भुख गई पेखी भुख ना जाए दुख लगे घर घर फिरे अगे दूनी मिले सजाए अंदर सहज ना आयो सहजे ही लै खाए मन हठ जिसते मंगना लैना दुख मनाए इस पेखे थावों गिरो भला जिथों को वरसाए सबदे रते तिना सोजी पई दूजे परम भुलाए पय किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योतिष पावै से भले जिनकी पत पावै थाए। महला तीजा सतगुर सेवै सदा सुख जन्म मरण दुख जाए चिंता मूल ना होवई अचिंत वसै मन आए अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाए मैल गई मन निर्मल होवा अमृत।

जिस तोर मस्तक ललाट लिखोई है, तिस गुर कहो सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा। सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार, मिल प्रीतम तिन्नी त्याया सच्चा प्रेम प्यार। मन ही ते मन मान्या गुर कै सबद्या पार, एह सज्जन मिले ना विछड़ै जे आ मिले करतार। एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया, शब्द ना करह विचार। विछड़िया का क्या विछड़ै जिन्ना दूजे पाए प्यार। मन मुख से ती दोस्ती थोड़िया दिन चार, इस प्रीति टुट दी विलम ना हो वई। इत दोस्ती चलन विकार, जिन्ना अंदर सच्चे का पाओ नाही नाम ना करै प्यार। नानक तिन स्यो क्या कीचै दोस्ती जे आप भुलाए करतार। महला तीजा। एक सदा एक तै रंग रह, तिन कह हो सद बलिहार जाओ। तन मन तन अर्पी तिन कहो निम निम लागो पाए। तिन मिलिया मन संतोखी है तृष्णा पुख सब जाए। नानक नाम रते सुखिए सदा सच्चे सिउ लिवलाए। पौड़ी। तिस गुर कहो हौ वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुर कहो सद बलिहार नै जिन हर सेवा बणत बनाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। तिस गुर कहो साबास है जिन हर सोजी पाई। नानक गुर विटों वारिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। श्लोक महला तीजा। तृष्णा दादी जल मुई जल जल करे पुकार, सतगुर शीतल जे

सेवक सेव करे सब तेरी, जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल होवा, जिन विचों आप गवाया आन दिन गुण गावे नित साचे, गुर कै शब्द सुहाया मेरे ठाकुर हम बारक शरण तुम्हारी, एको सच्चा सच तू केवल आ मुरारी रहाओ, जागत रहे इतनी प्रपाया सबदे हों मैं मारी, गृही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत् बिचारी, सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राख्या उर धारी, एहो मनुआ दे जिस धाम दा दूजे पाए खुआया, मनमुख मुगद हर नाम ना चेतै बिरथा जन्म गवाया, सतगुर भेटे ता ना हो पाए हों मैं मोह चुकाया, हर जन साचे साच कमावै गुर कै शब्द विचारी, आपे मिल ले प्रभ साचे साच रखिया उर धारी, नानक नाम गत मत पाई एहा रास हमारी, सोरठ महला तीजा भगत खजाना भगतन कौ दिया, नाओ हर तन सच सोए अखुट नाम कदे निखुट नाही, अखुट नाम तन कदे निखुट नाही, किने ना कीमत होए नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्द जग पुलदा फिरदा दरगह मिलै इस जाए रहाओ, इस ते ही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लो मोहंकारा, अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै कोई ना सुने पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा वाजगुरु गोबारा, हाँ मैं मेरा कर कर विगुते केहो चले ना चल दिया नाल, गुरमुख होवै सो नाम ते आवै सदा हर नाम संभाल, सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल, सतगुर ज्ञान सदा घट चरण अमर सिर बाद साहा, अन दिन भगत करै दिन राती राम नाम सच लाहा, नानक राम नाम निस्तारा सबद ते हर पाहा, सोरठ

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदास लाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यों रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिसबिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करे प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगता की सार करे आप राखै जो तेरे मन पाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्ष नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाणै मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हौ लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटा खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटै नाही गुरमुख मोख द्वारा। कर्म करै गुर शब्द ना पछाणै मर जन्मै वारो वारा। हौ मेरा जग पलच रहया पाई कोई न किसी केरा गुरमुख महल पायन गुण गावन निज कर होए बसेरा। ऐथै बूझै सो आप पछाणै हर प्रभ है तिसकेरा। सतगुर सदा दयाल है पाई विण भागा क्या पाईऐ एक नदर कर वेखै सब उपर जेहा पाओ तेहा फल पाईऐ। नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाईऐ सोरठ महला तीजा चौथुके। सच्ची भगत सतगुर ते होवै सच्ची हिरदय बाणी सतगुर सेवे सदा सुख पाए हम मैं शब्द समाणी। बिन गुर साचे भगत ना होवी होर भूली फिरै आणी मनमुख फिरै सदा दुख पावै डू मोए विण पाणी। पाई रे सदा रहो सरनाई अपनी नजर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ। पूरे गुर ते आप पछाता शब्द सचै विचारा
ਹਿਰਦੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਦ ਵਸਿਆ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰਾ। ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਜੋ ਜੁਗ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਨਾਉ ਮੀਠਾ ਮਨੈ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਆਇਆ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਅਗਾਇਆ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬੂਜੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮਗ ਪਛਾਣੈ, ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ

हर नाम देवहु आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किरबिख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे गात्मा तो तद ही पाए। हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने झूठे परम भुलाना रहाओ। त्रै गुण माया परम भुलाया हौ मैं बंधन कमाए। जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम।

ऊपर सतही प्रपाया गोविंद शरण तुम्हारी। गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। रहाओ तू हृदय गुप्त वसै दिन राती, तेरा पाओ न बुझै गवारी। सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया, गुण गावे गुण विचारी। गुरमुख प्रगास पया सांत आई, दुर्मत बुद्ध निवारी। आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया, सत संगत पुरख तुम्हारी। पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया, जिन कौ कृपा पही तुम्हारी। नान क्या तोल सहज सुख पाया, आंदन जागत रह बनवारी। सोरठ महला चौथा, हर स्यो प्रीत अंतर मन बेदया, हर बिन रहन न जाई। ज्यो मछली बिन नीरे बिन सह, त्यो नामै।

निरपौ निरंकार पवखंडन सब सुख नव निर्देशी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदात है निखुट न कभी जाई अनंद पया सुख सह सुमाने सदगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराद अन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी जिन कहो किरपाल होवा प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दयाला सब किश कीता तेरा वरत क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा जो पिता पूत किरपाला सोरठ महला पंजवा कर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हिरदय तार साचा साहेब मन वसै पाई।

जित तन नाम न उपजै भाई से तन होए शार साध संगत कौ वारिया भाई जिन एक अंकार आधार सोई साचा राधना भाई जिसते सब किश होए गुरपूरै जान आया भाई तिस बिन अवर ना कोए रहाओ नाम होने पच मोए पाई गणत ना जाए गणी विण सच सोच ना पाईऐ पाई साचा अगम तनी आवन जान न चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नावे एक कणी सिमरत शास्त्र सोधिया पाई विण सतगुर परम ना जाए अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सोधिया पाई विण सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम ते आए सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए नदर करे जिसे अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाईए पाई विरला कोई कोए नानक रता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए सोरठ महला पंजवां दो तुके जाओ लाओ पाओ अपाओ एहो मन तौ लाओ मिलन दूराई आने अपना करत बिचारा तौ लो बीच बिखाई माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहो उठ चरना न बिसरै मुहत छसाई रहाओ अरे मन मुगद्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई प्राण पत त्याग अंतु रचिया उर्ज्यो संग बैराई सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुध पाई सागत का बकना इउ जानो जैसे पवन चुलाई कोट परादा शादे ओहे मानो कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असनेही रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संगियां कर देही कीनी जल कूकर पस मेही होए आमरो ग्रे मैं बैठा करण कारण बिसरोही अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछे पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस ध्यावो दिन रह नेही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेट्यो वड भागी मने भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वडे आई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुरपूरा भेट्यो सगले दुख बिनासे सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेख

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाउ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ताँ कौ सर्ब परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाहीं बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवां तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिनु अवर ना दाता बिया जो जो शरण पर साधु की सो पार ग्रामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सदैव नासी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां कर दूजा चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सुमिता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता तूरी को बल जाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। पाव मिलोवा मल मल तोवा, एह मन तै कु देसा। सुन मीता हो तेरी सरनाई, आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा। मान ना की जय शरण परी जय, करे सो पला मनाई है। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय, इउं दर्शन हर जियो पाई है। भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। जन नानक कौ गुर कृपा धारी, सब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। प्रतपाल नितसार संभाल, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ, दीन दयाल कृपाल सुख सागर। सर्व घटा पर पूरी रे, पेखत सुनत सदा है संगे। मैं मूर्ख जानिया दूरी रे, हर बेअंत हों मित कर वरना। क्या जाना होए कैसो रे, करो बेंती सतगुरे अपने। मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट परादी तरिया रे, गुरु नानक जन सुनिया पेखिया। से फिर गर्भासना भरिया रे, सोरठ महला पंजवा। जिना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया। सह सहन यार सुख मन नारी, ऊंद कमल बिगसया। देखो अचरज पया, जे ठाकर कहो सुनते अगाध बोध। सोरदय गुरदया रहाओ, जोए दूत मोहे बहुत संतावत। ते भयानक भया, करै बेनती राग ठाकर ते। हम तेरी सरनाया, जह भंडार गोबिंद का खुलिया। जह प्राप्त ते लया, एक रतन मोको गुरदीना। मेरा मन तन शीतल थिया, एक बूंद गुर अमृत दीनो। ता अटल अमर नाम वा, भगत भंडार गुरु नानक सौपे। फिर लेखा मूल नान लया। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यो जाका मन लीना। से जन तृप्त अगाई, गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया। ते नर तृष्ण त्रखाई, हारिया राधे अरोग अनदाई। जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जिह जन ओट गही प्रभ तेरी, से सुखिये प्रभ सरणे। जिह नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मैं गरणे। जिह गुरमान प्रभु लिव लाई, ते महा आनंद रस करया। जिह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई, ते नरक कोर मैं परया। जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा। नानक सह पकरी संतन की, हृदय पय मगन चरनारा। सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निकोठा कर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे, रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगमे अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना संत हमारी ओढ़ सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हमलाह खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवा जे

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृतक का पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाथ फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा। इहां सुख आगे मुखी उज्जल मिट गए आवन जाने। निर्भव पय हृदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम पागा। कहो नानक ताके पूर करमा जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवा रतन शाड कौडी संग लागे। जाते कछु ना पाई है पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है। सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची देह अज्ञानी रहाओ। मृग तृष्णा अर सुप्रमनोरथ ताकि कछ ना वडाई।

तावत तावत नह त्रपतासिया, राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो, असंख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूर्ण अबनासी। काम क्रोध बिख जारे, महा बिखमो यगन को सागर। साधु संग उदारे, पूरे गुर मेट्यो परमान देरा। भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ, हर हर नाम निदान रस पिया। मंतन रहे अगाई, जत कत पूर रहे हो परमेश्वर। कत आवै कत जाई, जप तप संजम ज्ञान तत बेता। जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया। ताकि पूर्ण काला, काल कलेस मिटे दुख सगले। काटी जमकी फासा, कहो नानक प्रभ कृपा धारी। मंतन पय बिगासा, सोरठ महला पंजवा। करण करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी। सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी। मेरा गुरु हुआ आप सहाई, सुख सहज आनंद मंगल रस। अचरज पई बढ़ाई रहाओ, गुर की शरण पय पै नासे। साची दरगह माने, गुण गावत आराधना हर। आए अपने थाने, जय जयकार करे सब उस्तत। संगत साध प्यारी, सद बलिहार जाओ प्रभ अपने। जिन पूर्ण पै सवारी, गोसट ज्ञान नाम सुन उदरे। जिन जिन दर्शन पाया, पयो कृपाल। नानक प्रभ अपना आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवा, प्रभ की शरण। सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया। दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सदगुर त्याया। प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। गुण गावो रंग राता रहाओ, सतगुर नाम निदान दृढ़ाया। चिंता सगल बिनासी, कर कृपा अपनो कर लीना। मन वसिया अबनासी, ताको बिघन न को लागे। जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल बसेर दे अंतर। अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रभ अपने। जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ताके बलिहार है। जिन पूर्ण पैज रखाई, सोरठ महला पंजवा।

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगाओ बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ। अंतर बार थान थनंतर जतगत पेखो सोई नानक गुर पायो वडभागी तिस जे वडियावर ना कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया। राखन हारे राख्यो बारक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की शरण आई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाओ। घर मैं सुख बाहर फुन सुखा प्रभ अपने पहे दयाला नानक बिघन ना लागे को मेरा प्रभ होवा कृपाला। सोरठ महला पंजवा साधु संग भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमरिया नंता सागर तरिया पाई। हिरदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज तन उपजी रोगा कान मिटाई रहाओ। क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन न जाई नानक भगत पय अबनासी अपना प्रपया सहाई। सोरठ महला पंजवा गए कलेस रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा तारी आठ पहर आरा दो स्वामी पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास राख लै हो भाई मेरे कहो प्रभ आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुर पूरा भेटियो मिटियो सगलियां देसा। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपूरा सुखदाता करण कारण समर्थ स्वामी पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला जय जयकार भय जग पीतर होवा पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग माण। साचा साहेब सद मेहरवान बंद पाया मेरे सतगुर पूरै हुई सर्ब कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खाण अपने दास की आप पैज राखी नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवा दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी अपना बिरद समारिया। होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन दे सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा बख्श लय सब सच्चा साहेब सुन नानक की अरदासा।
ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਾਪੋ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਓ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਪਾਖਿਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਤ ਸਾਚਾ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਠੰਡ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮੈ ਕੀ ਉਹ ਹਟਤਾਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਤਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ ਭਾਈ ਦੁਖ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਰਹਾਓ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੈ ਭਾਈ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਭਾਈ ਸੱਚੈ ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ ਮੰਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ

सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महल

राख्या हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ। ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई। साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई। हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया। अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवां जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई। अपने सेव की आपे राखे पूर्ण पई बड़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल। रहाओ आन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता। अपने दास का कंठ लाए राखे जो बारक पित माता। सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचों ने सहसा चुकाया सिकदारों ने पतियाया। उमरावो आ गया चेरा मिल राजन राम नबेरा। अब ढूंढन कतो ना जाई।

तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चितराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ता की कीमत कहन न जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन यो महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरा साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुरपूरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर त्याईय अन दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडपागी पाए कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी चितलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सा पै पवित्रा सदगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पै सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पहे दयाला जप आनंद।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपूरा है राखी सरन सचे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला सांत सहज सुखन मैं उपज

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाई है साध संग मिल त्याई है मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीव है परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्ब गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देस निकटायो पां बीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो भयो कृपाल सर्ब को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक कहो मैं पीत गुर खोई तौ दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्ब गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम पर्यो भगत गोविंद का एह राखो पैज तुम्हारी तो

जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांती बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हर अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहणा कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है। अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है, होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती, हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवां सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कलेश सब नाठे। गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे, जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रहो आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे का सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस न जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पा दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावे, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरे करते, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिके बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्स अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावतला भूखे खावतला जना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवा, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाण, दास बाणी ब्रह्म वखाण, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवा, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवा,
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੈ।

जो जन भजन करे प्रभु तेरा तसै अंदेसा नाही। सतगुरु चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद घनेरे, सतगुर दिया दिलासा। जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी, पूर्ण प्रभ के कामा। गुरचरणी लग तरियो पव सागर, जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा, पयो किरपाल दीन दुख पंजन। आपे सब ठाती, खिन मैं राख लियो जन अपना। गुरपूरै बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है। सगल कलेस मिटै इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा। साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पए दरबारा। सोरठ महला पंजवा, सिमरो अपना साई। दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जन राखे। हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरी उपर कुर्बान। भय किरपाल पूर्ण प्रभ दाते, जी होए मेहरबान। रहाओ नानक जन सरण आई, जिन पूर्ण पैज रखाई। सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे। जी जंत तेरे तारे, राख पैज

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवां जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारे ओ अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल भयो त्रु जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा

तरई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई।

अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यो लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हृदय शब्द सदा पैरचिया गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेह बा नेत्र सोत्र सच राते जल बुझी तुझै बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागिए पाई दर कर साचया पूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइय पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गुर बिन अलख ना लखिए पाई जग बुढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लै हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखा नू प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगतां नूं जम जोहे ना साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरिद सिद सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुभाई मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका या लाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख बिदाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवार नहारा ओना की रीस करे सो विगुच्चे।

रंग रात्यो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई, हर आप वसै मन आए। फिर का हुक्म ना जान पाई, सा कुलखणी कुनार, मन अठकार कमावनी पाई, विणना में कूड़ियार। से गावे जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चा बैराग। आंदन राते गुण रवे पाई, निरपव गुर लिवलाग। सबना मार जीवाल दा पाई, सो सेवो दिन रात। सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिसकी वड्डी है दात। मनमुख मैली डुमनी पाई, दरगै नाही थाओ। गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई, मिल प्रीतम साज समाओ। एत जन्म हर ना चेत्यो पाई, क्या मोह देसी जाए। किड़ी पवंदी मोहायोन पाई, बिख्या नो लोभाए। नाम समालै सुख वसै पाई, सदा सुख सांस शरीर। नानक नाम समाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर। सोरठ महला पंजवा, कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सब जग जिनै उपाया पाई, करण कारण समरथ। जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ। किन कहिया क्यों देखिए पाई, करता एक या कथ। गुरु गोविंद सलाहिए पाई, जिसते जापै तथ। मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दानो दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ। जाके कर सब किश है पाई, नौनिद भरे भंडार। तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा गम अपार। जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार। सतगुर पूरा भेटिया पाई, शब्द मिलावनहार। सच्चे चरण सिरेविए पाई, परंप हो वै नास। मिल संत सभा मन मांजिए पाई, हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवै प्रगास। गुर बचनी सुखी उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखै सुने हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावै ता मेल लय पाई, हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासिया पाई, हृदय होवै प्रगास। प्रगट भया प्रताप प्रपाई।

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए धूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कूण ना चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सेई सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटकियो अधिक अहं बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्म हर स्यो संग न गया राजलीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेये पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिंगारी नाओ मनो कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत आयो पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास। नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप से

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारगपत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तन दीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परे काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवाया अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोबन कौ माटा, ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटे गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत सचेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहा ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़ी है क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म ले सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लही है, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कबीर।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तोलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरे नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी देहो, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबो ते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

हम बाती, जाओ तुम तीर्थ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम से जोरी अवर संग तोरी, जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा, तुमरे भजन कटै जम फासा, भगत हेत गावै रवदासा, जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होएगो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठावे पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हौमन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

और नहीं थाओ। जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सर्वदा तार। तनासरी महला पहला, चोर सलाहे चीतना पीजै, जे बदी करे ता तसूना छीजै।

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोय, तिस दा आनंद होवे दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हउमै मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, पिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तनासरी महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, संत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई ना पाए, मुलों पुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जो जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साजर ते प्रभ आप मिलाए, तनासरी महला

रे सहा सब तुझी माए समाहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे।

न जावै सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ। काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना, उण छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला। कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवां, कर कृपा दियो मोहे नामा। बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा। गुर की चरनी लाए साध संग।

ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोजी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन, बिनसो टीठा अमृत बूठा, शब्द लगो गुर मीठा, जल थल महियल सर्व निवासी, नानकर मैया डीठा, तनासरी महला पंजवा, जब ते दर्शन पेटे साधु, भले दिन ओए आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो, पयो प्रगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निदान और इद पीतर वसिया, ता दुख परम पौ पागा, पही प्राप्त।

गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवां जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नेकी खटानी जी की एक ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिन हर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन कर

कामवंत कामी बहुनारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया भोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस युग में पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलवख दुख पागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवां, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारै, हो विश्राम निद पाई। तुम करो

जा कहो हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस तां कै, जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, सरणी पावन नाम त्यावन, सहिस मावन संग रहाओ, जन के चरण वसै मेरे ही अरे, संग पुनीता देही, जन की तूर दे हो कृपा निध, नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा, जतन करै मान खुड है कावै, ओह अंतर जामी जानै, पाप करे कर मुकर पावै, पेख करै निर्बन, जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताकै उत ते उत पेखै, आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटै नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दी होए अपने, जाके मस्त करमा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब, नामो गत नामो पत जन की, मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै, सेई पूरा सहा, नाम व्यवहारा नानक आधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पुनीत पए दर्स पेखे, माथे परोर वाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल, तुम तो रखनहार दयाल, सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ, हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचनन ऊपर साल, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा, अपनी उकत खिलावै भोजन, अपनी उकत खिलावै सर्व सुख, भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल, जो राखै महतारी बारक कहो, तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक, सदा सलामत देवा, ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिलै, नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहु जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ।

मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ये टेक मन साधारी सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी तनाश्री महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ जिसका सा तिन्ही रख लिया पूर्ण प्रभ की पाती मेल लियो आपे सुखदाता नानक हर राखी पाती तनाश्री महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरै प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओह तत्काल तुम्हारा निरखो तुमरी ओर हर नीत मुरार सहाय हो दास कहो कर गए उधरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरा खसमा ना करे आप नानक अंध भय दुख भागे सदा सदा हर जाप तनाश्री महला पंजवा चतर दिशा कीनो बल अपना श्री उपर कर धारियो कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दया

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवा औखी कड़ी न देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डराओ, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यों उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरध पछानो, तब हों पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे, हर रस चोग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए, रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सरवर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सह समाए, सरवर मैं हंस हंस मैं सागर, अकथ कथा गुरबचनी आदर, सुन मंडलिक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रिपवन ज्योत रहे लिव लाई, सुर नरनाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूला नाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै काटन हारे, हमें मार मिले पगतारे, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आद्या रूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया प्रवान नात स्मरण न आवन जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाईए बिन गुर भेटे मरियाई है जाइए रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर सच प्यारा तन मैं मनुआ।

आप दिखावा आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै, घर पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया। पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पे आवै जाहे, नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा, मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए।

कोई ऐसो रे पेट संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावे पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद एक खेना धीरे मेरे करके पंचा।

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, 12 जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, 10 बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, 70 दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिए पुंडरक मना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा, रहाओ।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या यार पाऊं नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगता की त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गवारी दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी बिसव का दीपक स्वामी तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बाधवा कर्म कर अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी कर्म कर कपाल मफीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं कर्म कर खार मफीट सरी दादी ले लंका गाड़ ओ पाड़ी ले रावण बाण साल बिसाले आन तोखी ले हरी कर्म कर कशौटी मफीट सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला।

रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै, मदन मूर्त पैतार गोबिंद सैन पणै, पज परमानंद पीपा। कायो देवा कायो देवलो, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। काया बहु खंड खोजते नव निध पाई, ना कश आए बो ना कश जाए बो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा परण वै परम तत् है, सतगुरु होए लखावे। तन्ना गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, परियां शादन निकाया, नाज मंगो सत सीका। गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी। जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे ही अरै, रतन नाम हर बसिया, गुरहा तरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो। मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हरिओ महाराम, कर कीर्तो जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावा। मोक उतार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वस आवै, मन तन हरिओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा कर मादो,

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आपे आवर्त, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर समुद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए जप।

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ इंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महाजंजाला छुटके जमै डरा आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याद ना काई रहाओ दिसै सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एकै रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिनकै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहो बकों शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आन्यो पावना जीवत मीना बिन जल मरना ते है
हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे है। चरण कमल नानक आराध्य तिस बिन आन ना के है। जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ। प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी। लाए लय लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे। जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या भरनी। जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ। कोट बिघन बिनसे हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम। जय श्री महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलियो मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लागो तेह तेह आप बंधायो रहाओ। समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन को तायो। रतन राम कढ़ी के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा हर जू राख

करत पाप अभारा, पै मरबे को बिसरत नाहन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दे दिसको उठताया, कट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै, नानक हार पर्यो शरणागत अपै दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा शंत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंधन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चातृक जवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया, यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे, नित कर दे भोग बिलासा। तना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हों तिस आगे मन डेहिया। नानक कहे सुन बिनो सुहागण, मुंह दस डिखा फिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा, यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया, जय तन भाग मथाने। बहा पकड़ ठाकर हों किदी गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई, जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई, वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा कर दूजा शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ, नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख्य अवगण खते फेरे नित प्रत सद पूलिया, मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूलिया। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण, ऊंचा प्रभ का नाओ। नानकी बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ कां पह जाइय, आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदया पाई है, तजमान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मन ताको त्याई है सब जा के हाथ, राम नाम तन संची है नानक निभ है साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए, थान थन अंतरे आप जल थल पूर सोए।
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ਭਜ ਸਰਨ ਸੁਵਾਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ ਕਰਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਜੋਬਨ ਗਇਆ ਬਤੀਤ ਜਰ ਮਲ ਬੈਠੀਆ ਕਰ ਕੰਪੈ ਸਿਰ ਡੋਲ ਨੈਣ ਨਾ ਡੀਠਿਆ ਨਹਿ ਨੈਣ ਦੀਸੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਈਸੈ ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਚਾਲਿਆ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨੈ ਸਿਰ ਖਾਕ ਸ਼ਾਨੈ ਜਿਨ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਜਾਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰੰਗਿਆ।

चरण कमल शरण आए नानके आया, दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवां।

मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन।

जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई सलोक। और चंत जी रचना मात गर्भ स्थापन, सा सा स्मरंत नानक महायज्ञ ना विनाशन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहोथड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दै नाए पौड़ी। रगत बिंद करन मिया अग्न उदर मजहार, उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै, मन तन उर धार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे, जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण, सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माणे जिस संग, तै स्यो लाइय ने हो। सो सहो बिंदना विसरो, नानक जिन सुंदर रचिया देहो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया, दीने रस भोग। गृह मंदिर रथ अस दिए, रचपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए, प्रभ देवन जोग। हर सिमरतो तन मन हरिया, लै जाए विजोग। साध संग हर गुण रमो, बिनसे सब रोग। सलोक कुटम जतन करण, माया अनेक उद्यम। हर भगत पावहीन, नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। तुटड़िया सा प्रीत, जो लाई बेअन स्यो, नानक सच्ची रीत। साई से तीरतया पौड़ी, जिस बिसरत तन पसम होए। कहते सब प्रेत, खिन ग्रे मैं बिसना देवही, जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया, सो कार्य केत। जैसा बीजै सो लुणै, कर्म हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया, जोनी परमेत। सलोक कोड़दान इस नानंग, अनक सोधन पवित्र तै। उचरंत नानक हर हर रसना, सर्व पाप विमुचते।

पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन मरण पै कटी है।

गृह रचनाया पारं मन बिलास स्वादं रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृमै मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह सो साईं जय विसरै नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर से जानेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतन आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सह त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिन्ना मित्र नाठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मर पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राजरस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसनं अर चंत मूड़ अज्ञान अंधै नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत।

राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंद ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया। क्या विचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जिलते पृथ्वी नव खंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमण कौत कोट तमासया चेतना आव सुनाओ। नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई था पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया। काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिर सैतानिया। सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चालते। पेखंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी। चल दया नाल ना चलै सो क्यों संजीऐ तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीऐ। हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजीऐ प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजीऐ। हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजीऐ सलोक नच राज सुख मिष्टंग नच भोग रस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया। मिष्टंग साध संग हर नानक दास मिष्टंग प्रभ दर्शनंग लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी। हर बिन कछु ना लग गई भगतन कौ मीठा यान सुआ सब फीकिया कर निर्णव डीठा। अज्ञान परम दुखटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा। सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादंग अलबंधन कुसुम बसन। चरण कमलर चंत संत नानक आना रुचते मुख डेगाऊ पलक छड़ियाना डे उचित जीवन संगम तिस्तनी हर नानक संता मित पौड़ी। ज्यो मछली बिन

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सा राधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक न थीवै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ लै जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त है कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारिया रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरन दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर

दयाल पुरख भगवान ने नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया, कोट अगा गए ना।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन मानिया कथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावै पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जसी उत्तम खट दर्शन गावै राम शंकर करोल ते तीस ते आयो। नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावै सब गावत जेत्यो पाम। नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो। जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावै हर आपे ही मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावै। हर आपे पंच तत् विस्थारा वि धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावै। बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवै हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त कश नजर ना आवै हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहो सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहो सच्चा वणजारा। बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राखे उधर मजारा सो वैसा हर सेवो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन कौ करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाईए हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा सोई फल पावै फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किश कीमत कही ना जाए नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावै तवै छड़ाए। राग बैराड़ी महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ। जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। यक अर्ज गुप्तम पेस तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफत है दिल हेच ना दानी रहाओ।
ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸ ਤੰਗੀਰ ਆਖਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ ਸਭ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ।

संपत रथ तन राज सिंह वतन हो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो। जान बूझ के बावरे तैं काज बिगारयो, पाप करत सुख च्यो नहीं न गर्भ निवारयो। जेह बिद गुरु उपदेसिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार के गहु प्रभ शरण आई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बेद कतेब इफ्तरा पाई। दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जाओ करो हाजर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, एह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी नाहे रहाओ। द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दन बूंद, कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है सक करो।

करीमा रहीमा अल्लाह तू गने हाजरा हजूर दर पेश तू मने दरियाओ तू देहंद तू बिस्यार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हमचिनी पातशाह सामले बरना आसपात गजपात नरे नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी स भंगुर प्रसाद राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो मन संपटो जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई सूही महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए सुही महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवां तिस सज्जन सेई।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो ला जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्म, सब बिनसे दाल दलगा, पौ जन मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस मान, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटौ सद घुमगा। सूही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहु न हो भी भंग। मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेसिया, हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नव लाया, सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा सुध ना होई, आन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा।

प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोज आई, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरा मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खन्यंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हो हर पर प्यारा टूं टूंडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेला हर पाई। सुही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए। गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने। सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ। हर रंग कौ लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई। मन मुख मुग्ध नर कोरा होए, जे सौ लोचै रंग न हो वै कोई। नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै। सुही महला चौथा, जे वाह रस रही अगाए। गुरमुख पीवै सही समाए, हर रस जन चाखो जे पाई। तौकत अंत साध लो भाई रहाओ। गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार। मन मुख हर रस चाखिया ना जाए, होमै करै बहुती मिलै सजाए। नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती। लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे। हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका। मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए, जन नानक तिन को वंदन परसे। जय कृपा करे हर राय, सूही महला चौथा। तिन्नी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, ते सहलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका, जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक कै पवै इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो। हर सेवक पाए निस्तारा, सूही महला चौथा। जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै। होरत बिद लया ना जाई, हर तन संचिए पाई। जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय। हर तन कित ना पाई, हर रतन का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारी है। वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर मानको। हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई। हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुट नाही। हालत पलत हर तन की, भगता को मिली वड्याई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी है, जमदूत किसे का गवाया ना जाई। हर तन का ओचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहेले पए, हथों छुड़क गया। अगे पलत सागत हर दरगै टोई ना पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सुही महला चौथा, जिसनों हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै। सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णिया। जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ। सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो नेफर सब अगे।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकाओ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत रीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा तू करता सब किछ आपे जाने, क्या तुद पै आग सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहेब तू अंतर की बिद जाने, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड़ियाई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विच हम मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हम मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हम बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर पावै त्यों रखिया, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों पावै तिवें बख्स रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुदे आपे, तुदे आपे कर लाया, जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करै से रोवै, हर की वड़ियाई हौ आख ना साका, हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण, जन नानक कहो हर बख्स लै मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवां, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक ओंकारा, कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कत गयो ओ कत आयो रहाओ,
जल ते उठै अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा, सहस घटा मैं एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रगास, परम लोभ मोह माया विकार, भ्रम छूटे ते एकंकार, ओह अविनाशी बिनसत नाही, ना को आवै ना को जाही, गुर पूरै हौं मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई, सुही महला पंजवां, कीता लोड़ै सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की रख लाज, तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला, रहाओ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर, लोक पतियारै कछु ना पाइयै, साच लगै ता हौं मैं जाइयै, जिसनो लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै, दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए, दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै ता आणै रास, कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए, सुही महला पंजवां, तन सोहागन जो प्रभु पछानै, मानै हुक्म तजै अवमानै, प्रेस राती रलिया मानै, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तजला जलुकानी, रहाओ सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै, सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल न पावै, फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै, बिनो करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहया भरपूर, जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवां, गृह वस गुर कीना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी, कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे, रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावै, जा पिर कर आवै, गुण कामण कर कंतरी।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज रावने आया जन नानक पिर तन सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदेसरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजनहा तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले जागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै इस पागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै फिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै फिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई है।

संगा उहां संत करै हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जां कै दर्स पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जां का शब्द सुनत सुख सारे जां की टहल जमदूत बिदारे जां की तीरक इस मने सुधारे जां कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन ना पावै सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद सहा सहा वापारी मरना जो दिसै सो कल खरना कूड़ै मोहे लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक कौ करहो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला पंजवा।

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा। जा कै सिमरन कछ भौ ना ब्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवां, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूर्त दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ। साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी। काम क्रोध लो मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी। कहो नानकहो तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। सूही महला पंजवा, लोभ मोहे मगन अपराधी, करणहार की सेवना सादी। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोहे निर्गुणियारे रहाओ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानुख अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरनाया। सूही महला पंजवा, पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त कौ जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सो किश कर जित छुटै परानी, हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ। घोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारा कछु ना जाता। रखै पोचार माटी का भांडा, अत कुचील मिलै जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोहे बादा, महागर्त में निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जै, डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवा, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इउं दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ। एक बिना दूजा नहीं जानै, घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै। जो किछ करै सोई भल मानै, आदि अंत की कीमत जानै। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कै हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवा, गुर परमेसर कर

घुड़सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवां, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे,

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परण पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन कह लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोख आए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरे हाथ प्रभ, आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानो।

मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई तज मान सरणी परो, हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो, नानक को प्रभ दया करो, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ, राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ता कै पाछे जाओ, छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेख है, संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया, न मरिया न जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा, कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया, भरोसे आया कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी, मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया, सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया, ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया, गही ओट साधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ। सच तेरी सामगरी, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया, सच तेरा पासारा। तेरा रूपया गम है अनूप तेरा दरसारा, हम कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा कौ बलिहारा। राग सुही महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरा पाना तू है मनाए, जिसनो होए दयाला, साई भगत।

तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अति ऊचा कोई अवर ना तेरी पत ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा सूही महला पंजवा विसरे नाही जे तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहर जे तुद ते आई निर्मल होवे देहा मेरे राम हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरै बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बिपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना इस कल में मैल भरी जै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कड़कट नानक माजा।

है जन की महिमा केतक वर्णा जो प्रभु अपने पहाणे कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पहे निकाणे।

तुद चित आया उभरे, तेरी टेक परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ। अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला, सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए, अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बिनासे, मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवा, जब कछ ना सीओ तब क्या करता, कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देख, ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राय मुझते कछु न होई, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटे कतहू, काची दे आनी, कृपा करो प्रभ करण हारे, तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते, घट घट तुही ते आई है, तेरी गतमित तू है जाने, कुदरत कीम ना पाई है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। सूही महला पंजवा, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा, प्रवान गणी से ही एह आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हम बल जाई, केसा का कर...

सास सास नानके आराधे आठ पहर गुण गावा। सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर

तेरी बख्श ना मेटे कोई सतगुर का दिलासा, नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहरे आराधा, तेरी शरण तेरे प्रवास पंच दुष्ट लै साद, ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सूही महला पंजवा सगल त्याग गुर सरणी आया, राखो रख नहारे जे तू लावे तित हम लागे क्या ए जंत विचारे।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगुण मैं

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो। सुख दुख

सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैरते आ सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रत्ता मन मानिया गुरपूरा पाया हौ जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाह कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आई है मिले तुझै रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखै आप देह सो पाई है तू देखै थापो थाप दर भी नाई है देही होवग खाक पमन उडाई है इहो किथै कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंधकोर कब मुहाई है गर्भ मुसै कर चोर किस रू आई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है आराध्य है हर नाम मन वसाई है नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम विसार अहन सत्याई है ज्यो राखै कृपा तारत वै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लखटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जै देखो तै नाल गुर देखालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तवै रजाए परम पौ पंजना जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै हौ नाही तू होवै तुद ही साजिया आपे थापो थाप शब्द निवाजिया देही भस्म रुलाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद ना मैं ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै गुरमुख होवै ता एको जाने हौं मैं दुख ना संतापै बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कार्ज सवारे मनमुख अंधा अंध कमावै बेखटे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुरियत प्यारे
ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ ਜਮਕਾਲ ਬਾਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਮਣ ਛਡਾਏ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਅੜ ਸੜ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ ਤਿਤ ਨਾ ਤੈ ਮਲ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਏ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯਗਨ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਮੇ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ ਸਭੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਪਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਪਿਰ ਸੱਚੇ ਤਿਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नवनिद पाई है गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तोलावै आपे तोलनहारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाईऐ नाही नाम पाईऐ गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवागौन पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वड्याई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया के री दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पायर चन, तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप डुबे कुटम स्यो सगले कुल डोबन, निंदा पली किसै की नाही मनुख मुग्ध करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संगर अवरा उपदेशन सेवड़ भागी जे।

समाए सतगुर नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़ै दर सच्चे दे सन से भाई से सज्जना जो सच्चा सेवन अवगण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुखी उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंजै गुर शब्द स्यों लाह नाम लयेन सोइना रूपा पाप कर कर संचियै चले ना चल दया नाल विण नावै नाल न चलसी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हिरदै रखो संभाल एहो खर्चा खुट है गुरमुख निभै नाल ए मन मूलों भुलिया जसै पत गवाए एहो जगत मोहे दूजै व्यापिया गुरमती सच ते आए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर सों रह समाए सो सहो मेरा रंगला रंगे सही सुभाए कामन रंग ता चढ़ै जा पिरकै अंक समाए चिरी विछुन्ने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नवनिध नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन नावे जन्मे ना मरे नावे दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़े जे अंदन मिले रहन इस जग मैं विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है किद बिद मिले आ जाए गुर कै शब्द परम कटी है अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहारण है मन हर गुण सुधार वन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याय न रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होवै लिखिया गुर पाणा मन लयन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वेखा लिया प्रभ आत ब्रह्म पछान सब ना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोह माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए सेवा सा प्रभाव सी जो प्रपाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चित लाए राग सुही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करै ता सतगुर मेलै हर हर नाम ते आई रहाओ जे सुख देहे ता तुझै आराधी दुख पी तुझै ते आई जे भुख देहे ता इतही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप

मैं तुझ ऊपर बहु माणिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वे खाल एहा पाई मूं दातड़ी नित हिरदै रखां समाल पाव जुलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुरथी वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हूं साहो हों कह ना सका गुण तेरिया सहियां तऊ असंख मन्यो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देहे दर्श रंग माणिया जय डिठे मन तीरी है किलविख वंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाए सूही महला पंजवां सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग न सह रहाओ मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्या सुख ना पायन मूल नाम विशुन्या मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत बिचारिया नाम बिना सुख ना है सर पर हारिया आवे जाय अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते जिनको भय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया खोजै कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो राग सुही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अमावन डोसड़े हों क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दू एक चिड़ंदिया कौन जाने मेरा नाओ जियो जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी एह जियो से गुण मंजना यावनी हों कह जी दोस्त रेव जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो एक तटोल ना अंबड़ा हों सतगुर बाण तेरे जाओ जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हों एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहोरे क्या मोह देसी अगै जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ यास जियो तै सह नालो मुती अस दुखां को तरियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक ना

तंत मंत पाखंड न जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजै गुर शब्दी सच जानिया साजन होवन अपने क्यों पर कर जाही साजन दाते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करै रलिया कर्म धर्म सवाया अड़सठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे थाप वेखै तिसै पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेथिया क्यों पादर जाने आप मुसै मत होछिया क्यों राह पछाणे क्यों राहे जावे महल पावे अंध की मत अंधली विण नाम हर के कछ ना सूजै अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजै शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पै कर बिनंती राहो पादर गुर दसै मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया दुखी पर आया जगत सबाया कौन जाने बिद मेरिया आवने जावने खरे डरावने तोड़ना आवे फेरिया ना मिहुने उने चूने ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया गुर महली करे अपने सो परपुर लीना सेवक सेवा ता करे सशब्द पतीना शब्दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीना गुर महली करे अपने सो परपुर लीना कीता कैसा लाही है कर वेखै सोई ताकि कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावै आप जनावै आपा भुल ना भुलै जय जयकार करै तुद पावै गुर कै शब्दया मुलै हीणो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई राग सूही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिलड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम ते आवो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरे अपने विटो जिन कार्ज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कहे सुनो जन पाई सुख सोहलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन मरण पाओ भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिन कौ कृपा कीनी मेरे स्वामी तेन अंदन हर गुण गाए सुन मन पीने सह सुभाए जुग मैं राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविख सब गवाए सब को तेरा तू सबना का हौ तेरा तू हमारा जुग मैं राम नाम निस्तारा साजने आए उठे कर माही हर गुण गावै तृप्त्या गाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर पूखना लागे आए दह दिस पूज होवै हर जन की जो हर हर नाम ते आए नानक हरे आपे जोड़ विछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजने आए उठे कर माही एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा भक्त जना की हर

कार करे तन बालड़िए, हर वर दे मिलाए राम। हर कै रंग रती है कामण, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए, सच वरतै सब थाई। सच्चा सिंगार करे दिन राती, कामण सच समाई। हर सुख दाता शब्द पछाता, कामण लया कंठ लाए। नानक मैली मैल पछाणै, गुरमती हर पाए। सा तन बाली तुर मेली, मेरा प्रभया मिलाई राम। गुरमति कट चानन होवा, प्रभ रव रहया सब थाई राम। प्रभ रव रहया सब थाई मन वसाई, पूर्व लिखिया पाया। से सुखाली मेरे प्रपाणी, सच सिंगार बनाया। कामण निर्मल हमें मल खोई, गुरमत सच समाई। नानक आप मिलाई करते, नाम नमै निद पाई। सुही महला तीजा, हर हरे हर गुण गावो, हर गुरमुखे पाए राम। आन दिनो शब्द रवो, अनहद शब्द बजाए राम। अनहद शब्द बजाए, हर जियो कर आए। हर गुण गावो नारी, अंदन भगत करे गुरे आगै, सातन कंत प्यारी। गुर का शब्द वसिया कट चानन, गुर का शब्द वसिया कट अंतर। सेजन शब्द सुहाए, नानक तिन कर सद ही सोहेला, हर कर कृपा कर आए। भगता मनिया आनंद पया, हर नाम रहे लिव लाए राम। गुरमुखे मन निर्मल होवा, निर्मल हर गुण गाए राम। निर्मल गुण गाए ना मन वसाए, हर की अमृत बाणी। जिन मन वसिया से ही जन निस्तरे, कट कट शब्द समाणी। तेरे गुण गावे सहज समावे, शब्दे मेल मिलाए। नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुरु हर मार्ग पाए। संत संगत स्यो मेल पया, हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त पाए, हर कै नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए, गुर मेल मिलाए। मनुआ रता हर नाले, सुखदाता पाया मोह चुकाया। अंदन नाम समाले, गुर शब्दे राता सहजे माता। नाम मन वसाए, नानक तिन कर सद ही सोहिला, जे सतगुर सेव समाए। बिन सतगुर जग परम पुलाया, हर का महल न पाया राम। गुरमुखे एक मेल मिलाया, तिनके दुख गवाया राम। तिनके दुख गवाया जा हर मन पाया, सदा गावे रंगराते। हर के भगत सदा जन निर्मल, जुग जुग सद ही जाते। साची भगत करे दर जापे, कर दर सच्चा सोई। नानक सच्चा सोहिला, सच्ची सच बाणी। सबदे ही सुख होई, सुही महला तीजा। जे लोड़े वर बालड़िए, तां गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवे सुहागणी, हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए, गुर कै सह सुभाए। सातन कंत प्यारी, सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द सिंगारी, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जन आपे आप्यो पाया, नानक सदा पिर रावे अपना। जिन गुर चरणी चित लाया, पिर पायाड़ा बालड़िए। आंदन सहजे माती राम, गुरमती मन अंध पया। ते तन मैल ना राती राम, ते तन मैल ना राती। हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए। आंदन रावे हर प्रभ अपना, विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती। नानक नाम मिलै वड्याई, प्रभ रावे रंग राती। पिर रावे रंग रातड़िए, पिर का महल तिन पाया राम। सो सहवत निर्मल दाता, जिन विचों वाप गवाया राम। विचों मोह चुकाया जा हर पाया, हर का मन मन पाणी। आन दिन गुण गावे नित साचे, कथे अकथ कहानी। जुग चारे साचा एको वरतै, बिन गुर किने ना पाया।
ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ।